हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मार खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: अपना और मटिया
1: इट्स 9
2: भरोसा भी बैंक वाला भी भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
4: तेला जियो में इस तरह साल मलायो पे वने अज लगभग अरुणवीर को कदम खड़ी वाला रियल कश्मीर के खुसूसी आईनी हैसियत खत्म कर छी हुई। कश्मीर से बदी के इजहार लाए सजे मुल्क में रैलियू कड़ी पी वन। सजे मुल्क में सुबह 9 वगे 1 मिंट लाए खामोश इख्तियार कई वेंदी। मुख्तलिफ शहर में तकरीबू रिथियल।
5: सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीरी अवाम से बदी जो इजहार। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ जरदारी पंजे पैगाम में चयो आए तो दक्षिण एशिया में चटादार अमन जो क्याम कश्मीर मसले के हल से जुड़ियल है। 5 अगस्त ते भारत जा एक तरफ कदम आलमी कानून की भंजकड़ी आन। अड़ा कदम कश्मीर के कानूनी हैसियत खत्म नथा कर सकन। 7 साल गुजरण बावजूद कश्मीरी अवाम जो अजम कमजोर न थो। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी सियासी और सफारती हिमायत जारी रख। वजीर आजम शहबाज शरीफ है तो 5 अगस्त 2019 भारत कश्मीर के आइनी कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिश कई। भारत जा अड़ा एक तरफा कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल के ठहराने की भंजकड़ी आय। दक्षिण शाम में अमून इस्तेकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है। पाकिस्तानी हुकूमत कौम कश्मीर अवाम से गड बीठल है।
4: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फिजाया बैरिया के सरबराह की योम इस्तताल से वेलारियल कश्मीर के अवाम से बदी जो इजहार। हथियारबंद फौज जो जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती जो इजहार। वेलारियल कश्मीर में भारतीय फौज के गहरा इंसानी हकन की संगीन भंजकड़ियों भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के कब्जे से गिनती जो इजहार। ISPR मूजिब कश्मीरी मसले जो हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश ए गडियल कौमन की सलामती काउंसिल के ठहरान मुताबिक हुजन घुर्जे। पाकिस्तानी अवाम हथियारबंद फौज पाक भारत के गैरकानूनी कब्जे हेठ जम्मू ए कश्मीर के शाहपुर अखिराज अकीदत पेश कन था। भारतीय चिड़ डियारींदड़ बयान ए जारियाणो अमल खिते में अदम इस्तेकाम रो है। पाकिस्तानी अवाम जिलो किले में मिलाए बीठल है।
5: 5 अगस्त 2019 भारत कश्मीर के आइनी हैसियत खत्म कर आलमी कानून की भंजकड़ी कई। योम इस्तेसाल कश्मीर दक्षिण एशिया के तारीख जो कारो ढी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन जो योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से पैगाम। संदस चवण है तो कश्मीरी अवाम गुजरियल केतर ही दहाकन का पंजे हक खुदर इरादियत लाए बेमिसाल कुर्बानियों दई रो है। भारतीय रियासती जबर इन भंजकड़ियों कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर नथियो करे सकन।
4: मोसनक पी का एक भेरों बीहर वफाकी वजीर भी नवन सूबे पैदावार वाले वफाकी वजीर रजा हयात है तो इंतजामी यूनिट से गड गवर्नेंस ए हालतू बेहतर थे गड वफाक मजबूत थी। वजीर आजम तोड़ी मोसनक केडा भी न वन बाद शरीफ ही नवा सूबा ठाई।
5: जारी है जे घुर्ज के नजर आडो रखी गौर किया वे घुर्जन जरूरत मुताबिक का हतमी बढ़े। नए इंतजामी बंदोबस्त के हवाले से जो भी फैसलो थे उनका पर्या वसी तरत कौमी इतफाक राय तमाम जरूरी है। कौमी हालतों एक मजबूत ए मुस्तकम वफाक के घुर्ज कन थी। उन्होंने रूहानी पेशवा पीर पगारे जो बयान पीर पगारे है तो मरकाए हक में जिलत वाली शिक्षत का भारत ए इसराइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हथी दई रहा है। पाक फौज रेंजर्स FC पुलिस वतन के दिफा अवाम के तहफुज लाए बेमिसाल कुर्बानियों पेश करें। पूरी कौम उर्जमाए सदाई वतन के दिफा लाए पाक फौज कद आजमाए पे तारीख रायत मुताबिक का भी किस्म की कुर्बानी खान न कबाईंदी।
4: नवा सूबा ठाण नए मुल्की हालतों तक ध्यान हटाने लाय नवा सूबन जा छोछा छड़ा वेंदा आन। मोसन नकी वजीर आजम के मशूरे का सवा अड़ी गाल नथो कर सके। मुल्क भदुलमा इस्लाम जी ना फजल रहमान जी कोटिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत में शामिल न थींदासी मुल्क में मर्जी जी हुकूमतू ठाण से जमहूरियत अगते न वधंदी। कौमी ए इंसाफ ते बदल पॉलिसी की जरूरत है।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: GFM 88 नेटवर्क।

वेही तू न विसार मता तू बि न वञे विसरी ॾुखिया सुखिया ॾींहणा गुंगन मंझि गुज़ार उन्हनि जी लहसार जेकी सारियुनि तोखे सिक सां अस्सलाम वालेकुम समिन जी एफ एम 88.8 लाड़काणे जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम रोशन सुबुह साण करे अवां जो पंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो अवां जी ख़िदमत में हाज़िर ऐं क़बूल पवे सिक भरियो सलाम। जी समिन कहिड़ा रहण जा खु़शि आहियो, ठीकु आहियो, चाक चंग भला। असांजी हर पल हमेशह अवां प्यारनि सिगड़नि लाइ इहा ई दुआ हूंदी आहे त जिते बुझो खु़शि हुजो, कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्करंदा रहो। आमीन। साईं जा अॼु 5 अगस्त 2026 ऐं अरबा जो ॾींहुं आहे। साईं मुंहिंजा ही समूरी काइनात में या खणी ईअं चइजे त हिन आसमान हेठि जेका बि सा वारी मखलूक आहे सा आहे मोहबत जे मियाण में बंदि। असां इंसाननि ऐं जानवरनि जो अज़ल खां वास्तो रहियो ई कुर्ब करण वारनि सां आहे। जिते बि इंसान खे मोहबत मिलंदी आहे या कुर्ब ॾिसण में ईंदो आहे उते ई उन खे सुकून ऐं आराम मिलंदो आहे। छो त मोहबत में कुर्ब उहो घाटो वण आहे जंहिंजी शाम ॾाढी थधड़ी ऐं वणंदड़ थिए थी। हिन समाज में जिते शाम में वेही माण्हू घणो कुझु हासिल करे सघिजे थो त उते माण्हूअ खे मोहबत बि उते ई मिलंदी आहे। चवंदा आहिनि त जे ईंदे च वञी आ वेंदे च वञी वेह छॾे सारो ॾेह अंगण वञजे उन्हनि जे।

साईं मुंहिंजा, हीअ जेका असांजी ज़िंदगी आहे सा भरपूर लुत्फ़ अंगेज़ बि आहे त सहर अंगेज़ बि। हिन ज़िंदगीअ जा समूरा मंज़र हसीन बि आहिनि त अण वणंदड़ बि आहिनि। इंसान पंहिंजे समूरे जीवन में कॾहिं हार खाईंदो आहे त कॾहिं जीत। हिन जे दरवाज़े ते फतेह जा गीत ॻाईंदी आहे। उहे जीत ऐं हार जा सिलसिला सदियुनि खां इंसान ज़ात सां लॻियल पियल रहिया आहिनि ऐं हमेशा रहंदा। इंसान जॾहिं हाराईंदो आहे तॾहिं पंहिंजे हार जो सबबु ॼाणाईंदे पंहिंजे कोताहिनि खे लिकाईंदो आहे ऐं वरी जीत में फ़ख्रु महसूसु कंदो आहे। पर हिकु लम्हो अहिड़ो बि आहे जिते हार ऐं जीत जो मक़सदु ऐं उहो पेही वञण जो।

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबह जारी ऐं सारी आहे तव्हां जो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वगे ताईं ऐं हिन वक़्तु पाण हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ कॾहिं बि न वञिजो असां सां गॾु रहिजो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: माइनस हो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास जोंग 4G की।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मासर क्रीम पर तेजी से जज्ब
3: कोशिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनर्जेटिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनतम आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो फार्मूला खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलणु फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?

0: ना दा असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
1: जी समय न प्रोग्राम रोशन सुबह वहां बुद्ध पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क दा प्रोग्राम वहां बुद्ध पिया सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर मातली मटियारी सकरन स्टेशन तव असो प्रोग्राम बुद्ध पिया। समय जा प्रोग्राम रोशन सुबह लाए असो तमाम आसान सवाल अवान लाए चूंडियो इं दिल चवंदी आहे त प्रोग्राम खाली न हुजे यानि सवाल सां प्रोग्राम में वधीक हिकिड़ो मज़ो ऐं सुकून हासिल आहे जंहिंमें इंसान हिकिड़ी कोशिश बि करे थो महिनत बि करे थो जुस्तजू बि नई थिए थी। त असांजो सवाल आहे अॼोके प्रोग्राम लाइ पाकिस्तान जो क़ौमी गुल चमेली आहे पर अव्हां खे इहो ॿुधाइण त हुन जो ॿियो नालो कहिड़ो आहे। जी हा पाकिस्तान जो क़ौमी गुल चमेली आहे उन जो ॿियो नालो कहिड़ो आहे अव्हां खे इहो सवाल जो जवाब ॿुधाइणो आहे ऐं अव्हां ॿुधाए असांजे सवाल जवाब मोकिले सघो था एस एम एस ज़रिए। एस एम एस जो करण जो आसान तरीक़ो आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ नालो सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड कंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजो प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधो पिया त असांजी जी एफ एम 88 जी आई डी आहे याने फेसबुक जो पेज आहे त हुन ते बि असांजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं साईं जा तव्हां 10 बजे खां असांजे स्टूडियो में मोबाइल नंबर ऑन हूंदो त हुन ते बि कॉल करे पंहिंजो नालो ऐं सवाल जो सही जवाब लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। जी हा 0332132288। त असांजो अॼु जो जेको सवाल आहे त पाकिस्तान जो क़ौमी गुल चमेली आहे उन जो ॿियो नालो कहिड़ो आहे तमामु आसान सवाल आहे ऐं कोशिशि कयो ऐं इनशाला तव्हांखे सवाल ज़रूर लभी वेंदो। साईं मुंहिंजा हर इंसान जी दिलि तॾहिं ख़ुशि थींदी आहे ऐं हुन जी दिलि बाग बार तॾहिं थींदी आहे जॾहिं ख़ुदा करण को कमु कंदो आहे का नेकी कंदो आहे जेका दिलि सां कंदो आहे ऐं उनखे उन जो सुकून फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो आहे जॾहिं अलाह सां हुनखे अजर बि ॾींदो आहे ऐं हुनखे मज़ो ईंदो आहे। त साईं मुंहिंजा सिर्फ़ फलाही कम ई ईमानदारी जी वसफ़ न आहे उन लाइ लाज़मी आहे त जेको बि कमु असां करे रहिया आहियूं उहो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सचाईअ सां हुजे ऐं ज़िंदगी कारोबार वांगुरु आहे जंहिंखे कामयाब करण लाइ ईमानदारी जी ज़रूरत हूंदी आहे। असां शौरी या लाशौरी तौर ते हिन सां जेको बि सुलूक रवा रखूं था उहो शायदि असांजी यादगिरीअ में पंहिंजी असुल शिकल सूरत में महफ़ूज़ न हुजे पर ज़िंदगी पाण उन खे हरगिज़ न विसारींदी आहे। कंहिं ख़ासि मुदे पूरे थियण खां पोइ असांखे इंतिहाई ईमानदारी ऐं ख़ुलूस सां उहो समर वापसि ॾियणो शुरू कंदी आहे। इहो समर पंहिंजे झोलीअ में ॾिसण खां पोइ मालूम थींदो आहे त असांखे को हक़ नथो पहुचे त बदनतीअ सां कंडा पोखे उन मां सुकून ऐं अमुन जे गुलनि जी पोख कयूं पर ॻाल्हि इहा आहे त असां अहिड़ी ॻाल्हि कयूं ऐं सुहिणी ॻाल्हि कयूं जंहिंसां पंहिंजी दिलि ठरी पए।

जी सेम जा हुआ त दोस्तन सा सुठो लगापो ज़हनी दबाव सां छुटकारे जो सबब हूंदो आहे, पर ताज़ो माहिरनि चयो आहे त औरतूं जेकॾहिं पंहिंजे सिहत खे बहितर बणाइण चाहिनि थियूं त खेन घुर्जे त पंहिंजे साहेड़ियुनि सां दोस्तीअ खे वधीक घाटो करे वठनि। ऐं ताज़ो हिकु तहक़ीक़ में चयो वियो आहे त जॾहिं औरतूं पंहिंजनि सुठियुनि साहेड़ियुनि सां सुठो वक़्तु गुज़ार थियूं त उन्हनि में पंहिंजो ऑक्सीटोसिन नाले हार्मोन वधे थो, ऐं उहो हार्मोन ॿियनि ते भरोसो करण ऐं दोस्तीअ जे जज़्बे में वाधारो करे थो। उन करे मोहबत जो हार्मोन बि उन खे चयो वञे थो। असुल में दोस्तनि सां सुठो वक़्तु गुज़ारणु ज़हनी ऐं दिमाग़ी सिहत लाइ कारायतो आहे। हिन तहक़ीक़ में इहा बि ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त मज़बूत समाजी लाॻापा कंहिं शख़्स जी उमिरि में वाधारो करे सघनि था, जॾहिं त काफ़ी बीमारियूं जेके आहिनि ज़हनी दबाउ जेको आहे उन जो घटिताव थिए थो। त कोशिश कयो पंहिंजे दोस्तनि वेझो रखो, सुठनि दोस्तनि सां लाॻापो वधीक थियण सां इंसानी सिहत बहितर थिए थी। त पाण साहेड़ियुनि सां जेको आहे सो जीअं तव्हां कलाम ॿुधो था बैकग्राउंड में, इंजॉय कयो।

मोहसिन नकवी खां पोइ हिकु बि॒यो वफ़ाक़ी वज़ीर बि नवनि सूबनि जो वॾो हामी निकितो। दिफ़ाई पैदावार वारे वफ़ाक़ी वज़ीर रज़ा हयात चयो आहे त इंतिज़ामी यूनिट सां गवर्नर सां हालतूं बहितर थियण सां गॾु वफ़ाक वधीक मज़बूत थींदो। वज़ीर आज़म तोणे मोहसिन नकवी केॾांहुं बि न पिया वञनि, शहबाज़ शरीफ़ ई नवां सूबा ठाहिया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, उधर ना रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,
2: सिंध के माथे का झूमर,
1: GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज,

0: अपना शहर अपना घर मठियारी मठियारी की आवाज
1: 1.6 ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।
2: जीए FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आयु असाजी प्रोग्राम जो सवाल है त पाकिस्तान जो कौमी गुल चमेली है उन बे कड़े नाले से सडे वेंदो है। तव असा सवाल जो सही जवाब असा सेंड करे सोता एस एम एस

ज़रिए एसएमएस करण जो आसान तरीक़ो आहे। मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते तव्हां LRK लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाब लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड करे सघो था। ऐं साईं मुंहिंजा तव्हां फेसबुक जी ID GFM88 जी ID या जेको फेसबुक जो पेज आहे असांजो, तव्हां हुन ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था असांजे मोबाइल नंबर ते, जेका असांजे स्टूडियो में आन आहे। ऐं असांजो नंबर आहे 0332132288। त साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं, जज़्बात हिकु अहिड़ी कैफ़ियत आहे जंहिंमां सिर्फ़ नुक़सान हासिल थी सघे थो। छो त जंहिं वक़्त बि जज़्बात इंसान मथां हावी थी वेंदा आहिनि, तंहिं वक़्तु इंसान उभरो थी पवंदो आहे ऐं उभराए में अहिड़ा फैसला थी पवंदा आहिनि जंहिंजा नतीजा सुठा नाहे निकिरंदा। दुनिया जा सभु ॾह ऐं अकाबर हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त जेकॾहिं को माण्हू जज़्बात में हुजे त उन खां काई बि राय न वठिजे, उन सां को बि फ़ैसिलो उन खां न कराइजे। नफ़्सियात जा माहिर चवनि था त जज़्बात जो ॿियो नालो चिरैप आहे। छो त चिरैप अहिड़ी कैफ़त आहे जंहिंमें न नफ़े जी ॼाण पवंदी आहे न नुक़सान जी ॼाण। तंहिं करे हरदम पंहिंजे जज़्बात ते कंट्रोल करणु घुर्जे ऐं कॾहिं बि उन कैफ़त जी ताबियो न थीजे, पर जज़्बात खे पंहिंजे हुकुम हेठि मां असांखे पाण मिले।

साईं मुंहिंजा अलाह साईं जा एहसान मालिक जा कुर्ब कुदरत पारां ज़िबान जहिड़ो बेबाह तोहफ़ो अलाह साईं अता कयो आहे ऐं ॻाल्हाइण लाइ पंहिंजो तमामु बहितरीन ज़िबान जहिड़ो तोहफ़ो ऐं कननि जो तोहफ़ो मिलियो त ॿुधो ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल बि करियो। पराई पचार खे हिकु कन खां ॿुधी ॿिए कन खां कढी छॾियो ऐं अखियुनि जहिड़ी नेमत ॾिनई त अखियूं खोले ॾिसो सच खे सुञाणो सूंहं जा साथी बण जो कुदरत जे हुसन जी वाखाण करियो। अखियूं जेकी ॾिसण सां गॾु ॻाल्हाईंदियूं बि आहिनि अखियूं जॾहिं ॻाल्हाईंदियूं आहिनि तॾहिं अखियूं ई उहे ॻाल्हियूं सम्झंदियूं बि आहिनि। अखियूं प्यार मोहबत जा सनिहा ॾियण लाइ बि ॻाल्हाईंदियूं आहिनि त कावड़ ऐं किरोध जो बि इज़हार करे वठंदियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं त लफ़्ज़नि जा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
2: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्टों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द,

0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

अॼु ई समय ने प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि चुका आहियूं ऐं असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह में जेको वहां खे असां सवाल ॾिनोसीं अॼु त पाकिस्तान जो जेको क़ौमी गुल आहे चमेली उन जो ॿियो नालो कहिड़ो सॾियो वेंदो आहे त असांजे अॼु सवाल जो जेको सही जवाबु आहे उहो आहे यास्मीन या जास्मीन। जी हा, असांजे पंहिंजे सवाल जो जेको सही जवाबु आहे उहो नालो आहे यास्मीन या जास्मीन। काफ़ी दोस्तनि पंहिंजे प्रोग्राम में सही जवाब न आहिनि, कुझु ग़लति बि न आहिनि ऐं हुनजा नाला बाद में खणंदासीं। पहिरियों अवां ताईं पंहिंजो सांवल मीरालीअ जो ग़ज़ल अवां ताईं पहुचाईंदासीं ऐं हिकिड़ो कलाम बाद में तव्हांजा नाला खणंदासीं। ऐं सांवल मीराली चवे पियो त मुर्की नेण मिलाए दिलि खणी वियो आहे, मुर्की नेण मिलाए दिलि खणी वियो आहे, ज़ोरीअ कीअं अलाए दिलि खणी वियो आहे, वींझी सींझी सरस करे सिंगार पिरी, वेस गुलाबी पाए दिलि खणी वियो आहे, माणा टाणा अंगल आरा नाज़ नियारा, वेतर पाण वणाए दिलि खणी वियो आहे, घोरे नज़रुनि साण निहारी मुर्की मारी हुई, शोखीअ सां शर्माए दिलि खणी वियो आहे, सुरंदे सुरंदे पाण अची भरमे वेही, कुख में चूंडड़ी पाए दिलि खणी वियो आहे, तुंहिंजी कयल कचहरी मूंखां नथी विसरे, गुणनि भरियो ॻाल्हाए दिलि खणी वियो आहे, सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिलि कान्हे, अलाह अकबर, सीने में जो ॾिठमि त सांवल दिलि कोन्हे, हथ खणी कयमि हाय दिलि खणी वियो आहे।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला जंहिंजो अवां खे इंतज़ार हूंदो आहे त असांजो जिन बि दोस्तन सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे उन में पहिरें नंबर ते असांजो दोस्त आहे इक़बाल कुहारो अलाहाबाद मोहले लाड़काणे खां जंहिं पहिरें नंबर ते सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे। असां दोस्त खे वधीक मुबारकूं बि ॾियूं पिया जो सभिनी खां पहिरियां असांखे दोस्त इक़बाल कुहारो अलाहाबाद मोहले लाड़काणे खां जवाबु ॾिनो आहे। बाक़ी सभिनी दोस्तनि जवाबु ॾिनो आहे, कुझु ग़लति बि ॾिनो आहे ऐं कुझु दोस्तनि उको धोको बि आयो आहे, जंहिंमें इक़बाल लाशारी आहे मीरपुर झलोरी मीरपुर ख़ासि खां ऐं अब्दुल ख़ालिक लाशारी बि आहे ऐं यासमीन मलिक बि मीरपुर ख़ासि खां आहे ऐं फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, हाजी सोरा मंगरियो ॻोठु सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां जंहिं उको धोको आयो, आसपली चाचड़ लाड़काणे खां, अज़ीज़ सोलंकी भुट्टो सोलंकी नूरमन सोलंकी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां जंहिं उको धोको आयो त सही जवाब मोतियो ने लिखियो आहे जेको ग़लति आहे, ऐं मोहम्मद हुसैन खोसो कश्मीर खां ऐं बाबू अदील अबड़ो घोटकी खां ऐं पुलिस जो जवान शहबान चन्ना घोटकी खां ऐं ॻोठ सुमराणी ईंदड़ खां लॻे पनो वाकिल खां, हाफिज़ अमीन अल्लाह हैदरी ऐं हाफिज़ नईम अल्लाह काज़ी बि सही जवाब ॾिनो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। जंडोमरी खां नूर हुसैन तुनियो बदीन खां, सोमिर अली लाड़काणे खां, अता हुसैन रियाज़ भट्टी ऐं मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार एजाज़ कुंभार हालेपुट रास्ता मीरपुर ख़ासि खां, अब्दुल्ला चन्ना कुरेशी ॻोठु सखर खां, आमिर हुसैन जागीरणी बलोच लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां। ऐं समिन ॻोठु मोलेरिन माशी लॻे वॾनि महरनि खां, ज़मीर सोलंकी ॻोठु कंगन खां।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंची पे पाजे पुजाणी ते हयाती रही इंशाल्लाह वरी वहां सा मुलाकात जरूर थी तेसि ते पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो के दींदा इजाज़त अलाह।

0: 11 a.m. This anjek is dropped in the wild.
1: Pakiri. अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी रफ्तार भी बैंक Al Habib रिश्ता भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: अनकड़े ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के कब्जे ते गर्दी जो इजहार ISPR मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी आवाम जी ख्वाहिश ए गडियल कौमन जी सलामती काउंसिल जे ठहराव मुताबिक हुजन घुर्जे. पाकिस्तानी आवाम हथियारबंद फौज भारत जे गैर कानूनी कब्जे हेठ जम्मू ए कश्मीर जे शहीदन के भरपूर फराज अकीदत पेश कन था. भारतीय चिर डियारींदड़ बयान ए जहराणो अमल खिते में अदम इस्तेकाम जो सबब बणजी रहियो आहे. पाकिस्तानी अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आजादी के जायज़ हकीकी जिदोजहद में कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल है.

पंज अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आइनी हैसियत खत्म कई, आलमी कानून जी भंजकड़ी कई। जो मैत साल कश्मीर दखण एशिया जे तारीख़ जो सीनियर वजीर

Okay. आज जिनका बर्थडे है उनको कहेंगे मने मने हैव अ रन्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा

0: This soundtrack is... It's 11:30 AM. This soundtrack is...
1: है में Diamond Glow Bleach Cream कुदरती जिजन सा तैयार कयल जे साफ नरम चेहरो है में Diamond Glow Bleach Cream
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडी एहसास।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी हो वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ट्रिपल एट के ऊपर. इसके साथ साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज है GFM88 के नेम से. ठीक है, वहां पे आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. और साथ साथ हमारे जो सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ, तो सुर लगाओ गाना सुनाओ को हम करेंगे स्टार्ट. एंड कॉल हम आप लोगों के लेंगे 03000113488 के ऊपर. लेकिन उससे पहले हम एक गाना प्ले करेंगे, ठीक है जी. और इस गाने के साथ ना फिर हम सेगमेंट को कंटिन्यू करते हैं. एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय

0: GFM 88.
1: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटिया
0: की नींद बेहतरीन जरिया है।
2: टॉप जी पिकअप, गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप,
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह खारिश और बदबू को की हीट।
3: जिंदा कुरान के समझी बुधमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान टंते 88 नेटवर्क ते।

0: ओके, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी जी।
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुलजार है।
0: जिंदगी गुलजार है, ओके। गाना सुनाएंगे?
1: पहले भी सुनाया था आपने, सुनाया नहीं?
0: पहले भी सुनाया था मैंने, चलाए नहीं, चले आप सुना दें। लेकिन आपका गाना अगर दुखी होगा ना तब मैं नहीं चलाऊंगी, हाँ अगर कोई अच्छा सा गाना होगा तब मैं चला दूंगी। हाँ
1: चलो ठीक है,
0: ठीक है,
1: उर्दू में सुना दूं।
0: ओके सुना दें, सुना दें। अब तो परदेसी जरूर जाएगा क्योंकि आपने गा दिया है जी बॉलीवुड कंटेंट। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और मैं कहने वाली थी उफ उफ उफ आउच आउच, बट आप लोग समझते ही नहीं है। और आप लोग मतलब ये क्या हो गया, खैर जो भी हुआ है हम इसको चेक करेंगे, एंड जब हम इसको चेक करेंगे सो हम सही से क्या करेंगे, गानों को प्ले करेंगे। अच्छा 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स। आज हमारा सेगमेंट भी है जी बोलो तो माने, और बोलो तो माने में होगा ये कि नहीं सॉरी बोलो तो माने बाद में होगा, लेकिन आज जो हमारा सेगमेंट है डैट इज हरा भरा पाकिस्तान। और हरा भरा पाकिस्तान जो कि आप लोग सुन पाएंगे अब से ठीक ठीक 12 बजे के बाद। और

0: उसी के साथ नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करेंगे कौन कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: भाजी कुर्बान अली कासकेली को बुलाया, वो था गुलाम कासकेली लगी झंडो मारी का।
0: ओके, मुझे बताएं कि भाई प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं?
1: बिल्कुल, प्रोग्राम बुद्धिबा जिंदगी गुलजार है यहाँ जो वही की संगीत के आए मैंने गाय बजाए।
0: ओके, जबरदस्त, अच्छा गायन बजाए ये भी अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं गाना कौन सा गाएंगे?
1: संग रामन मुगले कलाम है वो गाय संग बजाए ना।
0: ओके,
1: गाने कर बर
0: ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और ये वाला गाना हम जरूर सुनवाते, लेकिन आपने सुनाया है सैड सॉन्ग, और हमारे सेगमेंट का रूल है कि सैड सॉन्ग जो सुनाएगा उससे हम सुन तो लेंगे लेकिन प्ले नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम प्ले करने जा रहे हैं सॉन्ग, और सॉन्ग जो हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। सो हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को प्ले करेंगे, और जब हम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को प्ले करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जी, हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना जो कि हम प्ले कर रहे हैं, इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक। जिंदगी गुलजार है।

है जो मैं साल मलाहे पे बने से मुल्क में मोदी सरकार दे फैसले आईनी हैसियत खत्म कही हुई सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीरी आवाम से बदी जो इजहार यूम साल कश्मीर के मौके से सदर आसिफ जरदारी है तो दखण एशिया में जगह दिल है भारत या एक तरफा कदम आलमी कानून की भनगड़ी अड़ा कदम कश्मीर खत्म नथा कर सकन पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के इखलाकी रख वजीर आजम शहबाज शरीफ से भारत कश्मीर से तब्दील करण की कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानून ए सलामती काउंसिल के ठहराव की भनगड़ी दखण एशिया में अमुन इस्तकाम लाए कश्मीर मसले जो हल जरूरी है पाकिस्तानी हुकूमत ए कौम कश्मीरी आवाम से गड बीठल है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फिजाया बहरिया के सरबराहन जो यूम साल से वलारियल कश्मीर के आवाम से जफजेती जो इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज के घेराव इंसानी हकन के संगीन भनगड़ी ए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सिस के कब्जे की गणती जो इजहार वलारियल कश्मीर में भारतीय फौज हथा शहीद थन्दड़न के भेटा पेश आईएसपीआर मौजूद कश्मीर मसले जो हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशन ए सलामती काउंसिल के ठहराव मौजूद होने घुर्जे भारतीय चिड़ डियारींदड़ बयान ए जहरियाणो अमल खिते में अदब इस्तकाम जो सबब बणजी रहो है अवाम ए पाक फौज कश्मीर की आजादी के जायज ए हकीकी जिदोजहद में गड बीठल है वलारियल कश्मीर जो अवाम पैंजन हकन लाए मजबूती से बीठल है भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ए कश्मीरी अवाम जो उम्मीदन ते हमलो है पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो दखण एशिया में अमुन इस्तकाम कश्मीर मसले के हल से गंढल है वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह तो सिंध जो अवाम कश्मीर से गड है भारत कदम वलारियल कश्मीर की हैसियत तब्दील नथा कर सकन सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमण तो यूम साल कश्मीर दखण एशिया की तारीख जो कारो ढी है कश्मीरी अवाम के जज्बे के कमजोर नथ कर सकन यूम साल कश्मीर के मौके से सिंध के मुख्तलिफ शहर में रैलियों ए तकरीबू कराची में सूबाई वजीर सैयद गनी की अगवाणी में रैली कड़ी वही मिठी में डीसी ऑफिस एसएसपी की अगवाणी में रैली खैरपुर में डीसी डीईओ एमएन की अगवाणी में रैली कड़ी वही शागिर्दन उस्तादन ए स्काउट्स ने शिरकत टंडे गुलाम हैदर में टाउन कमेटी का कॉलोनी बस स्टैंडिंग तई रैली कड़ी वही टंडे आदम में मुख्तार कार ऑफिस का प्रेस क्लब तई यूम साल कश्मीर रैली कड़ी वही मटियारी नौंदेरो बावड़ो ए बेन शहर में भी रैलियं कड़ी हुई वलारियल कश्मीर में भारतीय कदम की मजम्मत इस्लामाबाद के आपपारा मार्केट में दुकान के बाहर फायर ब्रिगेड जो गाड़ियों बाहर विसायण में रुधल

0: नहीं, जो डिजीज है वो भी एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा ये जो इरेगुलर अर्बनाइजेशन है, जो हम जो मुख्य जो फॉरेस्ट को काट के हम अपनी आबादी के लिए, आबादी जो बढ़ती जा रही है उसका भी एक लिमिटेड रखना चाहिए, ताकि जो हमारे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कम हो।
1: बिल्कुल, और इसी तरीके से मजीद और आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जिस तरह आपने बात की अर्बनाइजेशन की, तो आप हमें ये बताइए, क्या गैर मंसूबा बंदी शहरी तरक्की हीट वेव्स को मजीद शदीद बना रही है?
0: जी बिल्कुल, ये जो गैर जो इरेगुलर अर्बनाइजेशन है, जो हमारी मतलब हम बगैर किसी मंसूबा बंदी के जो हमारी आबादी बढ़ रही है और जो हम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा हमारे जो टेम्परेचर है उस पर फर्क पड़ रहा है। मुख्तलिफ दूसरे ममालिक हैं उसमें जो है अर्बनाइजेशन वो ऐसी जमीनों पर होती है जो कि काश के

0: हीट वेव से बचाव और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने के लिए इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: जी, मेरा पैगाम यही है कि हीट वेव को आम गर्मी न समझें, ये एक सीरियस हेल्थ रिस्क है और बाज हालात में मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। सरकारी हीट अलर्ट्स पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। शहरी गर्मी के वक्त बाहर जाने से हमें गुरेज करना चाहिए और वक्तन फवक्तन पानी पीते रहना चाहिए। अपने खानदान के बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनको जो पीक टाइम है गर्मी का, उसमें बाहर निकलने से उनका गुरेज करना चाहिए। उसके अलावा दरख्त जरूर लगाएं, लेकिन सही दरख्त और सही जगह जो है और सही मौसम में लगाना ये बहुत जरूरी है। पौधे लगाने के बाद इनकी जो है वाटरिंग और हिफाजत और मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। तीसरा पैगाम जो है, जो हमारे जो दरख्त हैं और कुदरती जंगलात हैं इनको हमें बचाना है और नई शजरकारी के बराबर हमें जो नए फॉरेस्टेशन है वो हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी।
0: अग्री जी, थैंक यू सो मच।
1: मैं कह रहा हूँ आखिर में बस यही है कि पौधे लगाने अच्छी बात है, लेकिन हमें उसकी मेंटेनेंस पे भी पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि हम उसे उसकी मैच्योरिटी तक लेकर जाएं।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अहसन, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो।
1: जी, यू आर वेलकम।
0: अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। और इसी के साथ आज का जो हमारा सेगमेंट है वही यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो दोबारा से होगा कल 12 बजे के बाद। तो इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है फ्रॉम योर रेडियो स्टेशन 3 FM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: Pakistan Ki Shaan.
1: It's 12:30 p.m. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
3: Hak sach jo awaaz, geet sangeet jo awaaz, ye Hyderabad Matiyari FM 91.6, Sindh jo awaaz, udanda raho.
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मुअसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज,
8: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया, 30 से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुसार. आए आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जो कि रहने वाला है. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम फ्रॉम द एल्बम सुबह आए ना. एंड द सॉन्ग कॉल्ड हूँ इश्क में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.

0: अच्छा पाकिस्तानी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी सॉन्ग है। ओके
1: जिंदगी
0: हम सर्च करते हैं ये ऐसा कैसा सॉन्ग है ये, ठीक है।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीएफ।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: चले बता दे कौन सा गाना है।
1: गाना ये मान ली जा तू मेरा दिल में जला परदेसी, आज की रात में जा परदेसी, दफरा जी का है।
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है।
1: ठीक है, तो मौला आपको खुश रखे, गाना प्ले कीजिएगा थोड़ा ही सही।
0: अच्छा ये किस सिंगर का गाना है?
1: ये अल्ताफ राजे का है, मान ली जा तू मेरा दिल में जला पाकिस्तान।
0: तू मेरा दिल न जला अल्ताफ,
1: मान ली जा तू मेरा दिल न जला,
0: मान ली जा तू मेरा दिल न जला, है ना? चले मैं देखती हूँ जी ये कैसा गाना निकल के आता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ वकार भाई का गाना तो हम सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्ले करेंगे एक और सॉन्ग।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
0: Fakiri Dex Ointment,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
4: वलारल कश्मीर जो आवाम पंहिंजन हक़नि लाइ मज़बूती सां बीठल आहे। भारतीय कदम आलमी कानूनी सलामती काउंसिल ऐं कश्मीरी आवाम जे उमीदनि ते हमिलो आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में अमुन इस्तक़ाम कश्मीर मसइले जे हल सां ॻंढियल आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध जो आवाम कश्मीरियुनि सां गॾु आहे। भारत कदम वलारल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमण चयो त योम इस्तिसाल कश्मीर ॾखण एशिया जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। भारतीय रियासती जबर इंसानी हक़नि जूं भंकड़ियूं कश्मीरी अवाम जे जज़्बे खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। योम इस्तिसाल कश्मीर जे मौके ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। कराची में सूबाई वज़ीर सैद गनी जी अॻवाणीअ में रैली कढी वई। मिठी में DC ऐं SSP जी अॻवाणीअ में रैली कढी वई। खैरपुर में DC, DEO में रैली कढी वई। शागिर्दनि उस्तादनि ऐं स्काउट्स जी शिरकत। टंडे गुलाम हैदर में टाउन कमेटी खां कॉलोनी बस स्टैंड ताईं रैली कढी वई। टंडे आदम में मुख्तार कार ऑफिस खां प्रेस क्लब ताईं योम इस्तिसाल कश्मीर रैली कढी वई। मटियारी, नौंदेरो, बावड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। वलारल कश्मीर में भारतीय कदमनि जी मज़म्मत। जल्द आबना हर्मुज़ खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प TV इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान ते ॿी आलमी जंग खां बि वॾो हमिलो करण वारा हुआसीं, जंहिंजो ॿुधी ईरान फोन ते राब्तो करे मुआहिदे लाइ चयो। आबना हर्मुज़ जल्द न खुले त ईरान ते वॾो हमिलो कंदासीं। आबना हर्मुज़ बाबति शुरूआती मुआहिदो अॼु थियण जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जे दावा मूजिबि मुआहिदे सां आबना हर्मुज़ ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। शुरूआती ॾींहं दौरान आबना हर्मुज़ मां गुज़रंदड़ कंहिं बि बहिरी ॿेड़े खां टूल या फीस न उगाड़ी वेंदी। ईरान मंज़ूरीअ जो अमल मुकमिल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुआहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6

परियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाना रेडी हो जाइए, क्या काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 सुल्की समाय लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होने वाले हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

हम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से यहाँ पर आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम आते हैं तो शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि भाई हमने कुछ दिन हो चुके हैं कि हमने कॉल ही नहीं ली है, समझ रहे हैं? तो कॉल ही नहीं ली है तो हम ये चीज जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे कि आप लोगों के लिए ना हफ्ते में एक या दो दिन हम पूरा प्रोग्राम जो है वो कॉलर्स के नाम डेडिकेट किया जाएगा, यानी कि उसमें पूरी जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर कॉलें ली जाएंगी और जो लोग बेचारे मैसेज नहीं कर सकते, कॉमेंट नहीं कर सकते, तो वो हमें इजिली कॉल कर सकते हैं और कॉलर्स के साथ तो वैसे भी गपशप बड़ी अच्छी हो जाती है कभी कभार हर वक्त नहीं, कभी कभार बिल्कुल। अगर आप भी

लॻे थी तूं रोज़ रोज़ असांखे मारण जे चकर में छो हूंदो आहे. न चकर में न आयो हूंदो, बसि मूंखे ख़बर हुजणु घुरिजे त केरु केरु ज़िंदा आहे अञा ताईं धरती ते बोझ. अच्छा मोहम्मद ज़मान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे भाईजान. और किशोर भाई कहते नन्ना सालों की कुछ गड़बड़ है, आप पहले बताया करें. नहीं मैंने पहले ही बताया ना, इसीलिए तो आते साथ ही बता दिया कि आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है. और चाचा कहते हैं मैं कैसे कॉल सेगमेंट अटेंड करूं, मेरी तो कॉल पर बंदिश ही नहीं. बंदिश आपकी कोई भी नहीं है, बस आप कोशिश करें. मैं आज पूरा जो है ना प्रोग्राम कॉल ही लूंगी, तो क्या पता आपकी कॉल भी मिल जाए. मूसा कोरिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. और ये हमारे साथ अखलाक भाई कहते हैं कि हम लिखे पढ़े लोग हैं हम. नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप प्रोग्राम सुनिए. अच्छा हैप्पी गर्ल हमारे साथ है, रियल हैप्पी गर्ल कहती है अस्सलाम वालेकुम सुनो जाने, क्या हाल है आपके. मैं भी आ गई आपकी प्यारी सी महफिल में, वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल आपको. और नखा अलावा मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम बाजी. व्हाइट इज ब्यूटी क्रीम नाइस और सॉन्ग सुनाई शमन का केदा गजब जा सिंगार गया दिले. बिल्कुल भाई के लिए गाना लगा दे हमारे साथ साथ शेयर करती रहिए. और उसके अलावा हम अभी यहाँ पे तो आपने कहीं नहीं जाते ना मोहसोस्टेट यूनिस्टेक.

0: है मैं डैच क्रीम।
1: असाबी दर्द, जो
2: कमर दर्द, सूजन से परेशान है,
1: अब
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश,
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: जख्मों के दर्द, तेज आराम, मयार,
3: टूटी का फैन।
4: की लाइफ जीरो और मुझे क्रेडिट मॉडल जैसी आ जाए, बातें ट्रेन तू मेरा
3: फैन के साथ दौर पर बहुत खूबियाँ ट्रस्ट जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा, व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकदार के साथ ग्लोइंग स्किन का राज। कौन इंटरनेशनल
5: अभी बुधोपिया बाद मटियारी F96
6: तजा पिता देव से नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6 व्हाइट इश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सा। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट इश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर कि आप किस तरीके कार को फॉलो करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो व्हाइट इश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते हुए आज के प्रोग्राम का सेगमेंट देखा जाए तो मैंने सेगमेंट ये पूछा है आप लोगों से गैस द प्रोडक्ट और इसमें क्या होगा सेगमेंट के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक ही सवाल आप लोगों से पूछूंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए जो कॉल पर आएंगे लोग उनसे मैं वारी वारी एक एक सवाल पूछूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं देखूंगी कि भाई आप लोगों को कितना पता है, कितने आपने ना गौर से प्रोग्राम सुनकर कितना आप नॉलेज रखते हैं वैक्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर कॉलें जो है ना वो मैं लूंगी अभी, इसलिए चलो कि यहाँ पर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों से सवाल पूछूंगी। तो इससे भी ये चीज मालूम होती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई ब्यूटी प्रोडक्ट आप भी अवेलेबल कर, ऐसा ना मुझे सुनने को मिलेगी भाई जी असां जी करीबी जनरल स्टोर से कौन मिले तो बाजी असां वेंदासीं शहर त वठी ईंदासीं, चयो तव्हां हाणे थोरो मुल्क जेको आहे न तरक़ी कंदो वञे थो ऐं दुनिया लाइ किथे वञी पहुती आहे, तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था। उन जे लाइ तव्हां वटि नंबर आहे, नंबर अगर ॿुधाया वञे त नंबर आहे, नोट कयो सभ खां पहिरीं 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 0-27-38-4309 हाणे हीउ नंबर तव्हांखे डायल करणा आहिनि, हिन नंबर ते डायल करण खां फौरन बाद तव्हां

आपके करीबी जनरल स्टोर से ही तमाम प्रोडक्ट्स यानी कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेदा सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगाईंदा इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लगाईंदा जेका तमाम जी बाबा थी चवना ना शक्तिशाली प्रोडक्ट्स अथव ॾाढा पावरफुल आहिनि अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते पहुची वेंदी उन खां अलावा तव्हां जो जेके कॉल्स वठण मां हाणे स्टार्ट कयां थी छो त अॼु जो जेको सॼो प्रोग्राम हूंदो कॉलर्स खे डेडिकेट हूंदो बाबा कॉलर्स बि चवंदा था भाजी असां कहिड़ो तव्हांजो ॾोह कयो आहे असांखे शामिल न आहियो कंदा प्रोग्राम में सो बिल्कुलु अॼु कॉलूं तव्हां जूं वठूं था पर तव्हां जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधो पिया पोस्ट खे ज्यादा खां ज्यादा तव्हांखे लाइक ऐं शेयर करणो आहे ठीकु आहे सो पैनल ते बि तव्हांजा मैसेजेस आहिनि ऐं कॉमेंट्स बि तव्हां कंदा वञो बाबा पढ़ी वठंदासीं हिकिड़ो मिंट मां मोबाइल खणी अचां ईअं जो तव्हांखे छॾी वञा ॿियो त भला तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी ही सास तव्हां गानो बि ॿुधो ऐं प्रोग्राम आहे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमालु कयो ऐं सोणा सोणा थी वञो

योगी जी वात पटे छो तां प्रोग्राम बुधंदा तां भी कॉल कयो ना प्रोग्राम में असा खबर पई त बाबा तवां थे केतरी नॉलेज आए वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में सो योगी जी संजो कॉलिंग नंबर आई 0332123228

0: तव्हां जे शहर में तव्हां जेको नंबर ॿुधाईंदा प्रोग्राम हुन ते डायल करे पंहिंजे बि शहर में अवेलेबल करायो न, जे तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो। चलो ठीकु आहे, तव्हां पंहिंजे भाउ खे चओ त भाउ अथव। चलो मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो। ओके, थैंक यू सो मच राहिला, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कयो, इलाही सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए। प्रोग्राम में कॉल कंदा कयो बाबा। ओके जी, सो नेक्स्ट कॉल जी तरफ अचूं, ॾिसूं नेक्स्ट कॉलर कहिड़े से सगन मौजूद आहे। हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आदी का चंगी भली भेण।
0: सफा सफा मजे में, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो, कहिड़े से सगन मौजूद आहियो।
1: अदी आऊं हाफिज़ हनी विरंद पियो अर्ज़ कयां, पंहिंजो गड़ी खेरे मो हेॾो पंहिंजो जीअं दरिंद मो जिक मां पंहिंजे पासे खऊं।
0: वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, प्रोग्राम ॿुधो पिया अला फोन ते अॼु ॿुधो। मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां अॼु जो सेगमेंट ॿुधो आहे, तव्हां खां सवाल पुछां।
1: हा सवाल पुछो,
0: सवाल इहो मां तव्हांखां पुछंदमि त मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको तव्हांखे ॿुधाईंदा जेको ॿिनि रातनि में रिज़ल्ट ॾींदो आहे।
1: हा इहो अॻ में त ॿियो हूंदो पर हाणे वरी अलाए कहिड़ो ए ब्यूटी क्रीम अलाए छा आयो आहे।
0: हा माना अॻ में ॿियो हूंदो, अच्छा अच्छा अच्छा, मूंखे ॿुधायो त कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो।
1: हा यादि त काफ़ी दोस्तनि खे कंदासीं, जिते जिते आवाज़ वञे पियो सभिनी खे खोड़ सारा सलाम नाला खणंदासीं, प्रोग्राम ई पूरो थी वियो एतिरी संगत।
0: वाह वाह, चलो इहो भलो कयो तव्हां सभिनी खे सलाम ॾेई छॾिया।
1: अच्छा सोंगड़ो को सुठो अदड़ी ॿुधराइजो।
0: हाज़िर हाज़िर, सोंगड़ो ॿुधराईंदासीं, सुठड़ो सोंगड़ो ॿुधराईंदासीं, सही आहे। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यारा बादुआ में याद। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी, शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। हाँ जी सवाल जवाब वाकई भलो डिने अदे अन्या असांगे सवाल जो सही जवाब कौन मिलो है, सो असा बी कॉल वठूं था, दिसूं था केरस सगन मौजूद है। हेलो
2: हेलो,
0: केरस सा सगन दा
2: राबिया
0: नादिया,
2: राबिया
0: राबिया राबिया राबिया किथां कॉल कई आ?
2: रोहिणी खां।
0: रोहिणी खां राबिया, छा हाल तव्हांजो, खुश आयो?
2: जी भाजी, तव्हां ठीकु आहियो?
0: अलहमदुल्ला सफ़ा ठीक। प्रोग्राम ॿुधो पिया राबिया?
2: जी जी भाजी।
0: अच्छा कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया, नालो अचे थो?
2: डी आइसक्रीम।
0: वाह वाह वाह वाह, मूंखे इहो ॿुधायो, सवाल पुछां मां तव्हां खां राबिया।
2: जी भाजी,
0: सर मूंखे इहो ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको ॿिनि रातनि में रिज़ल्ट ॾिए थो? ओके ज़बरदस्त, तव्हांजो सवाल जवाब सफ़ा सही आहे। तव्हां ॿुधो हो या तव्हांखे कंहिं ॿुधायो आहे?
2: न न ॿुधो।
0: चलो मूंखे ॿुधायो त तव्हां ॿियो छा चवंदा?
2: तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं था।
0: ओके, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो? थैंक यू सो मच राबिया, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई, मूंखे ॻाल्हायो, तव्हांजी कॉल मिली वञे थी त। ऐं चलो सभिनी ॻाल्हियुनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि राह चुकी आहे, सो इहो तव्हां यादि रखिजो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॿिनि रातनि में तव्हांखे रिज़ल्ट ॾे थी। हाणे असां ॿिए सवाल कॉल जी तरफ़ बि मूव करे 2N88 नेक्स्ट कॉल, ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
0: केरु मौजूदु आहे?
3: मिरपुर खां मोहम्मद अली जरार।
0: ओके ठीकु आहियो, प्रोग्राम ॿुधो पिया? वाह साईं वाह, मिरपुर खास में मिलंदा ही प्रोडक्ट जेके ॿुधाईंदी आहियां मां रोज़ प्रोग्राम में?
3: न साईं, कोन था मिलनि।
0: अञा कोन था मिलनि?
3: न असां जांच कई आहे, कोन था मिलनि असांजी।
0: अच्छा चलो असां अवेलेबल कराए वठूं था मिरपुर खास में। मूंखे ॿियो ॿुधायो त तव्हां खां सवाल पुछां। सवाल इहो आहे त मूंखे ॿुधायो त एलोवेरा जेको आहे उहो कहिड़े प्रोडक्ट जे अंदरि एड थियल आहे? चलो मूंखे ॿुधायो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
3: दोस्तनि यादि कंदा असांजी फौजा समूरो
0: गुजरात,
3: गुलाम रसुल मरी आहे, अज़ीज़ सोलंकी आहे, कुर्बान।

0: ऑस्ट्रेलिया।
1: ओके थैंक यू सो मच प्यारा बा। हाँ जी अगर समझ में गाल ना आ जाए तो बस चाहिए सरी ना कहे ओके ठीक है गाल कर। सो अदो पहिरियां ई लॻे पियो अथई सवाल जवाब न ॾियण जे मूड में हुयो। चलो ठीकु आहे खैर आस तव्हां खां पुछंदासीं ॿियो सवाल मतिलब इहो ई सवाल ॿिए कॉलर खां ॾिसूं था त केरु असां सां नेक्स्ट कॉलर मौजूदु आहे प्रोग्राम में। हलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, मां मोहम्मद सोलंगी बात कर रहा हूं।
1: मोहम्मद सोलंगी अच्छा किथां कॉल कई
0: आहे?
1: सखर से बात कर रहे हैं। मुझे बताए मेरा प्रोग्राम सुनते हैं सखर में तो चलता है। अच्छा मुझे बताएं आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो मैं बताती हूँ? वाह वाह वाह वाह, मैं सवाल पूछूं आपसे जवाब देंगे मुझे? मैंने सवाल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एलोवेरा जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर ऐड की गई है? एलोवेरा जिनके सिंधी में चेबो कुंवर बूटी वाइट इज ब्यूटी क्रीम में। वाह सही वाह भाज लाइ ताड़ियूं थी वजन केड़न दोस्तन की याद कंदा। हलो भा अदे जी कॉल ड्रॉप थी वही दोस्त वेचारा हे दुख कंदा असां के याद न कयो। चलो दोस्तन के खैर तमा याद करी वठजो पर हेदी टाइम जेको थियो आहे त उहो थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जी तरफ हलण जो। अच्छा ही जेको सवाल हो मूंखे लॻे पियो त इनखे बि तव्हां वॾी ड्रेग कराईंदा छिकींदा पर इनखे तव्हां खे छिकियो कोन ऐं ॿिए कॉलर ई अचे हिन जो सही जवाब ॿुधाए छॾियो। एलोवेरा जेका आहे उहा वाट जे अंदर एड थियल आहे समुझूं था। उन खां अलावा हाणे वरी टियों सवाल पुछंदासीं जेको ॿियो कॉलर असांजे प्रोग्राम में ईंदो। हाणे टाइम थियो आहे बाबा न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ हलूं था। सो न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ खां हली पोइ तव्हां ॾांहुं वापसि अलाए छा ॻाल्हायो समुझ में न आयो। न्यूज़ ब्रेक हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा पोइ वापसी जल्दी तव्हां ॾे मोटींदासीं। तव्हां करे ॾांहुं थी सो से इन की प्लेस इन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एंड ट्रीज़ इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे ताकि हो जाए।
2: मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
5: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Viram Fauri Khatam. Aaj hi Karibi Store se naam lekar talab kare.
6: Ab aap sunenge. GAFM Network KTN.
7: Jee hal shaan jude lahe. भारत जा हिकु तरफ़ा कदम आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। अहिड़ा कदम कश्मीर जी कानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जे इख़लाक़ी सियासी सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जे आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई। भारतीय कदम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भञकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमून इस्तक़ाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौम कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक फिज़ाया ऐं बहरिया जे सरबराहनि जो इहो मिसाल ते वलारियल कश्मीर जे अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराउ इंसानी हक़नि जे संगीन भञकड़ियुनि ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जे कब्ज़े ते गणतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश। ISPR मूजिबि कश्मीर मसइले जो हल कश्मीरी अवाम जे ख़्वाहिशनि ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ मूजिबि हुअणु घुर्जे। भारतीय चिर ॾियारींदड़ बयान जहराइणो अमल ख़िते में अदम एहतसाम जो सबबु बणिजी रहियो आहे। अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीर जी आज़ादीअ जो जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदो गॾु बीठल आहे। वलारियल कश्मीर जो अवाम पंहिंजनि हक़नि लाइ मज़बूती सां बीठल आहे। भारतीय कदम आलमी कानून सलामती काउंसिल ऐं कश्मीरी अवाम जो मीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में रहियल आहे, कश्मीरियुनि सां गॾु आहे, तब्दील नथा करे सघनि। सीनियर वज़ीर शर्जी लिना मेमण चयो त इहो मिसाल कश्मीर ॾखण एशिया जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। भारतीय रियासती जबर ऐं इंसानी हक़नि जूं भञकड़ियूं कश्मीरी अवाम जे जज़्बे खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। योम इतिसाल कश्मीर जे मौके ते

0: सिंध मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तकरीबूं। कराची में सूबाई वज़ीर सैद गनी जी अॻुवाणीअ में रैली कढी वई। हैदराबाद डिवीज़न जे ठठो, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलियार, मटियारी ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। मीरपुर ख़ासि, उमरकोट ऐं थरपारकर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि योम इतिसाल कश्मीर जे मौक़े ते रैलियूं कढियूं वयूं। सांगड़ ऐं नौशेरो फेरोज़ ज़िले जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में कश्मीरनि सां एकीअ जो इज़हार कयो वियो। सखर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि रैलियूं कढियूं वयूं। लाड़काणो, कंबर, शादातकोट, कश्मोर, रेडकंद कोट, जेकमाबाद ऐं शिकारपुर में बि रैलियूं कढियूं वयूं। जल्द आपना हरमुस खुली वेंदो। ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी इंटरव्यू में चयो आहे त ईरान ते ॿी आलमी जंग खां बि वॾो हमिलो करण वारा हुआसीं, जंहिं जो ॿुधी राब्तो करे मुआहिदे लाइ चयो। आपना हरमुस जल्द न खुले त ईरान ते वॾो हमिलो कंदासीं। आबन हरमुस बाबति शुरूआती मुआहिदो अॼु थियण जा इम्कान। हरमुस जे उतर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जी दावा न्यूज़ वेबसाइट मौजूद मुआहिदे सां आबन हरमुस ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। शुरूआती तौर 60 ॾींहं दौरान आबन हरमुस मां गुज़रंदड़ कंहिं बि गहरी ॿेड़े खां टूल या फीस न उगाड़ी वेंदी। ईरान मंज़ूरीअ जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुआहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम थार जा 80% इंटर ख़तम थी विया आहिनि। अमेरिकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिकी अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमेरिकी इतिहादनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बे दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। जमीन हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी ॿेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल निशानो बणायो आहे।
1: सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हरी की सुनते रहो GFM 91.6।
3: गोडन जो सूर ऐं चेहरे जानी करी हलण वेहण
4: ताईं फकीरी ऐं माल न कई अथई।
3: अच्छा वाकई
4: फदा कुदरत मुतासिर हंदा ते थी सूर छिक ऐं अकराह करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्स
3: इस्तेमाल कीअं कजे
4: लॻाए ऐं आस वठ ऐं ॿुधो अथई खणी फकीरी एनल जैसे
5: जो आवाज़ जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर निया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
4: पासवर्ड आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो।

0: ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਬਰ ਪਈ। ਹੈਲੋ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਅਚੂੰ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਅਗਰ ਤਵਾਂ ਕਯੋ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੁਧਾਈਂਦਾਸੀ। ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਹੀ 0332132322 ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਡਿਸੂ ਕੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
0: ਕੇਰ ਮੌਜੂਦ ਆ?
1: ਸਖਰ ਖਾਂ ਕਿਰਨ ਲਗਾਰੀ।
0: ਸਖਰ ਖਾਂ ਕਿਰਨ ਲਗਾਰੀ ਛਾਲਾ ਕਿਰਨ ਖੁਸ਼ ਆਯੋ।
1: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਤਾਓ।
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਜ਼ੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧੋ ਪਿਆ ਕਿਰਨ? अच्छा, मुख्य बुधाए तो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो जेको बुधाईंदी आया? अरे बा, किरण जी कॉल ड्रॉप थी वही। मां चाहिया पई किरण सा थोड़ो गालाया, ओ हेडी सारी गालियों कयो आ बे त तो सा गालियों कया आईली। ओके जनाब, सो कॉलिंग नंबर 0332132322 सवाल जेको हाँ तुम कॉल कंदा, तो सवाल तुम का पुछंदम तो टीह वाइटमिन्स जा जेके कैप्सूल्स आयन उ केड़े प्रोडक्ट जे अंदर एड थियल आहे। यो सवाल तुम के इन जो जवाब बुधायणो आहे। मां 16 तुम का सवाल पुछां थी, तो मुझी इहा हिकड़ी तुम इन सवाल जा जवाब दियो जी। मां तुम का इलाही सवाल पुछी सका। सो नेक्स्ट कॉल पे करे वठूं था, ॾिसूं नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर मौजूद है?
1: ਰਿਦਾ
0: ਬਤੂਲ। ਕਿਥਾਂ ਕਾਲ ਕਈ ਆ? ਅੱਛਾ, ਰਿਦਾ ਬਤੂਲ ਕੰਬਰ ਕਾ ਫੋਨ ਕਈ ਆ? ਛਾਲਾ ਰਿਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਯੋ? ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਯੋ? ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧੋ ਪਿਆ? ਮਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾ ਠੀਕ ਆਯਾਂ। ਉਨ ਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਯੋ ਆ ਜੇਕੋ ਬੁਧਾਈਂਦੀ ਆਯਾਂ? ਚਲੋ ਮੂੰਖੇ ਇਹੋ ਬੁਧਾਯੋ ਤਾਂ, ਸਵਾਲ ਜੇਕੋ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਅਚੇ ਦੋ। नंढड़ी केतरन सालन जी आ?
1: 10 सालन
0: जी। अच्छा, मुखे यो बुधायो ता तवा 10 सालन जा आयो ना, पोई भी तवा वाईटी जी का लवली क्रीम आ ना वा इस्तेमाल करे सको ता। ता घर में केंके चे जो पांजी अम्मी की चोजे का ता बुधाय थी हो? ता बिलाई सुठा आयो, माशाल्लाह अल्लाह सी ता के खुश रखे। आई बियो के तो सुठी याद कंदो जी। थैंक यू। तव्हांजी मोहबतूं आहिनि। कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो रिदा?
1: हलो।
0: आई लव यू टू रिदा। थैंक यू सो मच। सोणी नंढड़ी छोकिरी 10 सालनि जी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी, ऐं नंढड़ी ॿारड़ी हुई त मां सोचो हिन खां छा ई सवाल पुछां। स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो सिंधी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो जी, अस्सलाम वालेकुम। केर मौजूद आ?
2: यास्मीन बात कर रही
0: है। यास्मीन बात कर रही है मीरपुर खास से।
2: मैं आपका रोज़ सुनती हूँ, लेकिन आपका कॉल तो लेती नहीं
0: हूँ। नहीं, यास्मीन मैं कोशिश करूँगी कि कॉल्स लूँ, ताकि ये जो लोग मैसेज के थ्रू शामिल नहीं हो पाते तो वो कॉल कर ले हमें।
2: तो आपका रोज बहुत अच्छा होता है, पूरा शो सुनती हूँ बिल्कुल खामोशी।
0: अच्छा, चलिए खामोशी से अगर आप शो सुनती तो आपको सारी चीजें पता होंगी कि मैं शो में क्या क्या बताती हूँ।
2: वो तो बताती है, लेकिन मैं क्या हूँ करीमे वगैरह इस्तेमाल नहीं करती ना। मैंने अपनी बहन को बताया, वो इस्तेमाल कर रही है।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। ओके,
2: बहुत अच्छा है, उनको अच्छा लगा।
0: चलिए जबरदस्त। सवाल पूछूं यास्मीन आपसे? सवाल ये कि मुझे बताएं, 30 वाइटामिन के कैप्सूल जो है वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर एड किए गए हैं?
2: ये एच वाइट में,
0: वाइट एच लवली में।
2: हाँ,
0: चलिए मुझे और बताएं क्या कहना चाहिए।

0: हो रही है, लेकिन काम में बिजी होती है ना, कभी कभार सुन लेती हूँ।
1: चलिए मुझे बताएं कि आप प्रोग्राम कभी कभार सुनती हैं?
0: हाँ, मेरी बहन सुनती है ना, हैप्पी।
1: हैप्पी, अच्छा आप हैप्पी की सिस्टर हैं?
0: जी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ।
1: ओके ओके, चले हैप्पी को तो फिर
0: आप,
1: जी
0: आपसे सवाल करना है।
1: जी जी पूछें, अल्लाह ही रहम करे।
0: ये के
1: हाँ,
0: ये के मेरी शादी होने वाली है ना, इसलिए कह रही हूँ कि मैं और हैप्पी आपसे मिलने चाहते हैं।
1: चलें फिर आ जाएं, कोई मसला ही नहीं। चले ये भी ठीक है, ठीक है कोई मसला नहीं, जब आपका दिल करे तब आइएगा।
0: अभी नहीं, शादी के बाद आऊँ, मैं बात करूंगी आपसे।
1: वैसे आपकी शादी कब है, कब है आपकी शादी?
0: अभी पता नहीं, जनवरी महीने में।
1: तो ये जनवरी तो इतना दूर है भाई, आप आ जाएं मिलने, ऐसी भी कोई क्या बात है।
0: बात करूंगी तो वो कहेंगे लड़का है, इसके लिए मैंने कहा मैं फोन कर देता हूँ।
1: चलें चलें ठीक है, और बताएं क्या कहेंगे, किसको सलाम देंगे, किसको याद करेंगे?
0: कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं जो याद कर रहे थे, सुनती है उसको सलाम कह दूं, कमरे में बैठिए।
1: चलें चलें ठीक है, सलाम उसको भी, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सादिया नाम था भाई लड़की का, बहुत अच्छी माशाल्लाह, और क्या ही बोलूं मैं, मीम याद आ गई ये वाली, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा चले, मैंने गाना रखा था वो तो खैर मैंने देखा तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि गाना आप तो खैर प्ले नहीं हो सकेगा, तो हम इसी मामले में एक और कॉल पिक कर लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हो? सड़ो थानी, सड़ो थानी, छोकरी झुका ली थी वैसे।

0: बस सुनती हैं। सखर में भी नहीं मिल रहा, सखर में भी नहीं मिल रहे,
1: नहीं मिल रहे,
0: इसलिए की बात है। आप सब लोगों के मैसेजेस पहुंचा दोगे कि भाई सखर में, मीरपुर खास में। चले महक मुझे और बताएं क्या करेंगे।
1: मैं आपका गुरुकुराम सुनती हूँ, आप इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, मैं सुनती हूँ, बहुत प्यारी सी बातें करती हैं।
0: थैंक यू, आपसे कम ही प्यारी बातें करती होंगी, आप बहुत प्यारी हैं।
1: मैं आपका आवाज सुनती हूँ, ऐसे लगता है मैं सुकून आ जाता है,
0: हवाओं में उड़ रही है।
1: मुझे बहुत खुशी हुई।
0: चलिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैक। आप कॉल किया करें मेरे प्रोग्राम में जब भी मैं कॉल्स लूँ।
1: हाँ आपकी भाई
0: जी
1: तो आपसे लगती ही नहीं है, इतनी ट्राई करते हैं आप।
0: आज मुझे लग रहा है कि लड़कियों का दिन है आज तकरीबन, प्रोग्राम में आपने देखा होगा लड़कियों की कॉलिंग आ रही है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए।
1: बड़ी मुश्किलों से लगी है।
0: चलें चलें, मैं दुआ करूंगी आपकी रोज ही कॉल लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कमर्शियल लेना है मैंने, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसे ही कॉल किया करें। महक हमारे साथ लाड़काना से नहीं बल्कि सखर से मौजूद थी। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, बातें तो लड़कियां जब दो बैठती हैं बातें करें तो आपको पता ही होगा कि वक्त का पता ही नहीं चलता। तो यहां पर लेते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
2: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज। यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न अदा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणनि जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: लाड़काने वासन लाए खुश खबरी, डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियुनि जो माहिर, हिते मोहिड़ा, डडर, मलो, पुराणी खारश, वार चरो, पुराणो फट, चित्री, लैशमिनियासिस, चेहरे जा दाग, बग, नहन जो खराब थियण, वारनि जा मसइला, एलर्जी ऐं औरतुनि जे चेहरे ते गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज बहितरीन नमूने कयो वञे थो। यादि रखंदा, सिर्फ़ जुलाई महीने जी हर जुमे ते चमड़ीअ जे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास कई वेंदी। डॉक्टर अजीत कुमार सचदेव चमड़ीअ जे बीमारियुनि जो माहिर, एड्रेस अली हॉस्पिटल, वगड़ रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4:00 खां रात जो 8:00 ताईं ऐं आचर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03124344689।
5: खूबसूरती वो जो नजर आए जैसे इन फूलों की बागात में, कुदरत के हसीन नजारों में, और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल वाइट एक्टिव कंबाइन वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए, जिल से डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे, दिन बदन जिल को ब्राइट करे, 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ 5-स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। हेल्पलाइन नंबर 03073468474।
6: साईं कुछ खबर अथव?
7: छा थियो सोणी?
6: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
7: सोणी हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे, पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
6: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
7: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
6: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
7: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरी

0: खे नओ बणायो। असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे।
1: हाणे सरगोधा बैटरी सर्विस ते सोलर यूपीएस इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरी में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिण लॻाया वञनि था।
0: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा। सरगोधा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924।
2: छा अव्हां खे या अव्हां जे कंहिं बि मिट माइट खे छिन, गले जो गुदूद, पिते जी पथरी, थायराइड, मोका, पेट ऐं छातीअ जूं बीमारियूं या कंहिं बि आपरेशन जो मसलो आहे, त हाणे अव्हां खे फिक्र करण न घुर्जे। मशहूर ऐं तजुर्बेकार कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर पिरह मेमण, MBBS, FCPS, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर में मरीज़नि जो मुआइनो ऐं इलाज करे रही आहे। एड्रेस: तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स, साम्हूं आर्ट्स काउंसिल, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राबते ऐं मालूमात जे लाइ 07447524474। डॉक्टर पिरह मेमण, अव्हां जी सिहत असांजी ज़िमेवारी।
3: अदी, छा ॻाल्हि आहे, एॾो खुश पई नज़र अची।
4: हा भेण, बस ख़बर ई कुझु अहिड़ी आहे, हाणे असां औरतूं बि पंहिंजी तकलीफ़ आसानी सां ॿुधाए सघूं थियूं।
1: जी हा, सिंध जी पहिरीं फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, जंहिं पंहिंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मां लखे रुपया कमाइण बदिरां लाड़काणे में औरतुनि लाइ फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिन जी बीमारियुनि मसलनि पेशाब में रुकावट, जलन ऐं साड़ो, ज़ख़्म, बेओलादी, बुकी ऐं मसाने जी नालीअ में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेज़र ऐं चीरे वसीले करे थी। यादि रखंदा डॉक्टर साहिबा, चकास, बुकिन जो अल्ट्रासाउंड ऐं ऑपरेशन बिल्कुलु मुफ़्त कंदियूं आहिनि। बस कमरे ऐं दवा जो थोरो ख़र्च मरीज़ पाण भरींदा। ऐं हा, एक्स-रे, IVP ऐं CT स्कैन पिणु अधु पैसनि में कराए ॾिए थी। पेशावराना डॉक्टरनि ॾांहुं मरीज़ खणी वेंदड़नि जे भुलाइण ते तवजो न ॾियो। एड्रेस: अल निसा मेडिकल सेंटर, नज़ सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं, ऐं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राबते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 03422241869।
5: निसा, ख़ैर त आहे, मंडकाए थो घुमे, धकु लॻो अथई छा?
6: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में ॼंघ जो हॾो भॼी पियो आहे। तोखे त ख़बर आहे, ग़रीबी हाल आहे, पैसा बि कोन्हनि के, सोचियां थो ऑपरेशन किथां करायां।
1: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफ़ी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफ़ां ऑपरेशन मुफ़्त करे थो, ऐं इलाज बि अहिड़ो सुठो थो करे जो ठीक बि जल्दी थी वेंदे। ग़रीब तोड़े अमीर लाइ ख़ुशख़बरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी, MBBS, FC।

0: क्योंकि
1: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे।
2: फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे चमड़ीअ जे जलन लाइ बि
1: कीअं कजे।
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम रोज़ानो
4: FM 91।
5: और इसी के साथ साथ कॉल करते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉल्स पर आकर आपने ना बहुत ही आसान से यहाँ पर अगर आप हमारे साथ शेयर करते, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कॉलों वाला सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करते, क्योंकि कुछ लास्ट वाला जो टाइम होगा उसके बबाद हम कॉल्स बंद कर देंगे। तो कॉलिंग नंबर है 0332132128।

0: ओके जी, सो यहाँ पर एक कॉल है और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ताम दाए के रस्से से गन मौजूद आयो। शकीला हैप्पी गर्ल। अच्छा हैप्पी गर्ल, कितना फोन किया? लाड़ी माँ सफा ठीक, ताम दाए हैप्पी गर्ल, खुश आयो मजे में? अच्छा मुख्य बुधाए प्रोग्राम बुधो पिया खबर हुंदी ता वरी शौक से बुधंदा ये ना।
1: जी जी,
0: सो तमा का सवाल पुछा?
1: जी बिल्कुल पुछो।
0: सवाल मा ता का यो पुछंदम तो मुखे बुधायो त जेके जड़ी बूटी वान उए केड़े प्रोडक्ट में ऐड थियल आइन?
1: वाइटिश।
0: वाइटिश में दिस दिस दिस ये ना करना, दिस ये ना करना। आयो बे छा चमन चाहिंदा ॾाढो भलो कयव चलो चलो का ॻाल्हि कोन्हे का, कोई ॻाल्हि कोन्हे का, कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो? आवाज़ प्यालो करे वियो, ॾिसो था ॾिसो था। जलवा अपना ओके जी, कॉल कर सकते कॉलिंग नंबर 0332132128। नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था, नेक्स्ट कॉलर केरु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे? पंहिंजो अलीज़ा। अलीज़ा किथां? मीरपुर ख़ासि खां कॉल कई। सफ़ा मज़े में, तव्हां ख़ुशि आहियो अलीज़ा? अच्छा अलीसा, ॿुधायो मिलनि था प्रोडक्ट या अञा ताईं कोन अवेलेबल थिया
1: आहिनि?
0: ऐं ली इहा त ॾाढी ग़लति ॻाल्हि आहे, मिलंदा कोन त माण्हू वठंदा कीअं?
1: नंबर ते बि चेक कयो पर अञा
0: अवेलेबल न आहिनि। चलो चलो अवेलेबल कराए वठूं था। मूंखे ॿुधायो त टॉपिक यानी की सेगमेंट जेको आहे सो तव्हां खां सवाल पुछां। जड़ी बूटियूं कहिड़े प्रोडक्ट में एड थियल आहिनि?
1: आई थिंक एंटी एक्नी।

0: डी स्किन मैन.
1: न न बस तव्हां पहिरियों सवाल सही हो, पहिरें खे लॉक कयो. माशाल्लाह माशाल्लाह, हिन मां ख़बर पइजी वई त तव्हां गौर सां प्रोग्राम ॿुधंदा.
0: जी जी ॿुधायो.
1: चलो मारे छॾे अला. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदव लीसा?
0: जेके बि छोकिरियूं ॿुधनि पियूं उन्हनि खे सलाम पई.
1: जी निदा ॻाल्हाईंदी छो न?
0: ॻाल्हाए भले निदा, वेठी आहे बर में.
1: हलो
0: सिद्रा
1: खेर, तव्हां ॿुधायो निदा ठीकु आहियो?
0: जी मां बिल्कुलु ठीकु.
1: तव्हां छो न ॻाल्हाईंदा आहियो? अच्छा शर्म ईंदो आहे, इहो शर्म केसि ताईं ईंदो?
0: ख़बर न आहे छो
1: थो. चलो ॿियो छा चवंदव? जेको शर्माईंदो माण्हू मूंखे पाण खे सम्झ में ईंदा त इन माण्हू सां मां छा ॻाल्हायां हाणे. ॿियो कंहिं दोस्त खे यादि कयो या कुझु चवणु चाहींदा? जी चलो थैंक यू सो मच निदा सां सां गॾु मौजूद असांजी दर्दे दिल ॾाढो दर्द अथसि अला. सो अॼु वाकई मुंहिंजी इहा हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई त मुंहिंजे प्रोग्राम में या न इलाही सारी छोकिरियुनि जूं कॉल्स अचनि पूरी थी, यानी इन मां इहो साबित थिए थो त कॾहिं न कॾहिं तव्हांजी ख़्वाहिशात पूरियूं थी वेंदियूं आहिनि. सो अलहमदिल्ला. कॉलिंग नंबर आहे 0333-12-1322-88. नेक्स्ट कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे. हलो वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु
2: आहे?
1: ओके वकार भाउ, छा ख़ुशि आहियो?
2: अलहमदिल्ला.
1: मज़े में प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: प्रोग्राम तव्हांजो ॿुधायो.
1: कहिड़ो प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: प्रोग्राम वाइटेश ब्यूटी क्रीम.
1: वाह वाह, इस्तेमालु कई अथव वाइटेश?
2: हा हिकु चकर इस्तेमालु कई
1: आहे. सिर्फ़ हिकिड़ो चकर?
2: हाजी प्रोग्राम कॾहिं कॾहिं खां ॿुधो हिन जे करे ख़तम थी वञे, वरी वठंदासीं शाम.
1: हिकिड़े चकर में तव्हांजी क्रीम ख़तम थी वई?
2: ॿ टे ॼणा हणंदा
1: आहियूं. अई पोइ हिकु चकर में ख़तम करे छॾी सभिनी?
2: हुननि
1: खे चओ पंहिंजी पंहिंजी वठो, मुंहिंजी न हणो. चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
2: मुंहिंजो दोस्त अब्दुल जब्बार, तकरीबन जेके बि ॿुधनि सभिनि खे सलाम. सिंधी कलाम ॿुधायो,
1: सिंधी गानो हलायो था भई. लेपो न ॾियो क्रीम खे, थोरो सही तरीक़े सां कुझु ॾींहं हले बबी सही. ओके सो कॉलिंग नंबर 0. हलो मुझे तो अचे. हलो आवाज चिच में चो. ओके सो नेक्स्ट कॉल वठू या कॉलर्स के हाँ थोड़ा रेस्ट दियो? यही वठू था, ये कॉल वठू था, लाश दिल थी चले. हलो केर मौजूद?
2: अच्छा
1: दिल चो तो ये कॉल वठा, ॾिसो तव्हां निकिरी आया.
2: अच्छा
1: ठीकु आहियो? मज़े में
2: अलाह जा एहसान हुजे. मां तव्हांजी तव्हां ॿुधायो.
1: अलहमदिल्ला. प्रोग्राम ॿुधो पिया? सच ॻाल्हायो.
2: तव्हांखे ख़बर आहे मां ॻाल्हाईंदो न पुट, हर बार हा कयां सही नथो लॻे. चाहे थो हलायमि सयूं हली कोन असांखे.
1: शिकारपुर ताईं आवाज़ कोन पहुचंदो हूंदो?
2: न पुटो बिजली इशू थी वेंदो आहे.
1: हा सही सही सही. ॿियो कोई प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो अञा ताईं या न?
2: बसि उहो ई जेको ॿुधायो मां उहो ई थो यूज़ कयां.
1: चलो ठीकु आहे. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदव, छा चवणु चाहींदा?
2: बसि पुट मां इहो ई चवणु चाहींदुमि त जेको आहे सो तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखंदा कयो.
1: जी
2: घणे में घणो.
1: ओके तव्हां बि पंहिंजो लाइ सॼो ख़्यालु रखंदा कयो.
2: ओके बसि ठीकु आहे. तव्हां मुंहिंजी दोस्त बि आयो, भेण बि आयो,
1: चलो थैंक यू सो मच. तव्हांजो ख़्यालु रखिजो प्यारो. फारूक भास सां गॾु मौजूदु हुयो, शिकारपुर खां कॉल कंदो आहे. ऐं हिन खां अलावा बसि हाणे कॉलर्स खे थोरो रेस्ट ॾियूं था, असां बि थकिजी पियासीं, कॉलर बि थकिजी पिया हूंदा कॉल ट्राए करे.

0: साहब जाने।
1: अच्छा छा था चो काल वारन के कमेंट में घुरा त खबर पई हुनन वीचारन वट बटणन वारो मोबाइल आ न गाल के समझना कर बाकी जिन वट आहे वरी कन
2: समझो था
1: बाकी जेकी वीचारा नथा करी सकन कमेंट उए छा कन उए कॉल कन बिल्कुल तमा जे ला कालियो आहे सो बिल्कुल सी प्रोग्राम आहे टेश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सा तमा केड़ो प्रोडक्ट लगायो आहे तमा केड़े प्रोडक्ट जे बारे में चायो प्या त बाबा सांगते हली लगाईंदा से आई देर न कयो वठो बाबा ही तमाम प्रोडक्ट सुठा आहे जेके मार्केट में तमा जे ला अवेलेबल आहे अगर कोन था मिलन त पोइ तव्हांखे नंबर से राबतो करणो पवंदो जेके नंबर्स मां हाणे तव्हांखे ॿुधायां थी तव्हांखे राबतो करणो आहे ऐं नंबर आहे 03-5025-9070 ऐं ॿियो नंबर 274-4 हा भई वात पटिजी पोइ वात त पटबा जो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अॼु अञा कुझु छोकिरियुनि जी कॉर्नर लॻी जीअं दुआ थी वई असांजी निदड़ी थी वई लुबी थी वई।

अच्छा मकसूद मलाह हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हैप्पी गर्ल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और सादिया को भी वेलकम।

0: संगा
1: किशोर भाई कहते ही गलत आ छोकरा करते यार लगवाला करे सदा ही यही थी मोहम्मद जमान भा थैंक यू थैंक यू थैंक यू अगर चौथा इन करे आऊं कॉल नथु कयां तो असा के मुझाए तो छोकरियों अवां का सवाल पयूं कन दिसो ना छोकरियों केडियों कॉन्फिडेंट आए तवा भी पुछो नी तांगे केन जलियो आए

0: अच्छा मूसा गोरी भाई, थैंक यू सो मच. दर्द दिल के नहीं, हाय अल्लाह, आज मैंने चंदा जाने से बात की. सर मिली. अला शाबस बिन टिन माण्हुनि खे जेके स्टार्टिंग खां वठी हिनमहिल ताईं कॉमेंट कनि पिया. अलाह तव्हांखे मतिलब अवार्ड ॾिनो वञे इलाही कॉमेंट्स करण जो. ईअं बि हुजे. हा अच्छा आमिर खान वहेसर, वालेकुम अस्सलाम. प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि अचे पियो, थैंक यू. तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया ऐं गॾु गॾु वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट बि आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा जीअं तव्हांखे मुकमल ख़ूबसूरती मिली वञे. अच्छा हैप्पी गर्ल कहती सॉरी वो चले. हाँ कोई बात. अच्छा चाचा कहती आज फिर आपने निराश कर दिए. चाचा आप खुश कब होते हैं.
1: सावन की जड़ी लड़ी कामों की पर किस्मत की घड़ी.
0: अच्छा नवाज कोसो भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू. ओके सो बिल्कुल हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है. आप लोगों से इतने हैं आज रेजी वया आहिनि, सो तव्हां दिलि नंढी न कयो बाबा. सुभाणे फरमाइश कजो, तव्हांजी फरमाइश हलाई वेंदी ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्याल रखंदा. वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो जीअं तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले सफ़ा वी आई पी वारी ऐं तव्हां मर्द मायूं सभी हणी सघो था. सो मोकिलाणी नाहे सलामत. हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर.

जी खुसूसी आहे नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 5 अगस्त 2019 जी कोशिश कई भारतीय कदम आलमी कानून ऐं सलामी आहिनि। ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे।

0: गढ़ ऐं नौशहरो फिरोज़ले जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में कश्मीरियुनि सां एकीअ जो इज़हार कयो वियो। सखर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि रैलियूं कढियूं वयूं। लाड़काणो, कंबर, शादातकोट, कश्मोर, रटकनकोट, जेकोवाद ऐं शिकारपुर में बि रैलियूं कढियूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार, कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई, पिता ते वसे नूर मुझो तो।
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
7: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम नाइंस जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो ले।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।

0: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मुअसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली
3: तकलीफ और कंधों के दर्द
2: और अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
3: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को रखें,
3: आज कर तलब करें।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: फ्रेंड ब्यूटी क्रीम ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: अरे उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खानी को तोड़ना चाहता है, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणन जख्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़कीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़कीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 4 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge KTN.
7: महदे ते हिताब नर्मस के 60 दिन लाइ बिना फीस ते खोलियो वेंदो आहे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट जी दावा मौजूद मुहिदे सां अब नर्मस ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। नर्मस जे उतर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमिल करे वरितो आहे। अमेरिकी इख़्तियारियूं अॼु मुहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमेरिकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ा मिज़ाइल

पेन सिस्टम थार जा असी सैकड़ो इंटर सेक्टर खत्म थी रहा आहिनि। अमेरिकी थी रहिया ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रम्प ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिबि बे दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमेरिकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। जमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद अठ बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ योम इतिसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियुनि सां एकीअ जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि एहतमाम कयो वियो। हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां सत साल अॻु 5 अगस्त ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम। सदर आसिफ ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कश्मीरी अवाम सां बदीअ जो इज़हार। जो महसाल कश्मीर जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत क़दम आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। अहिड़ा क़दम कश्मीर जे कानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि। कश्मीरी अवाम जे इख़लाक़ी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। शहबाज़ शरीफ चयो त दारुणीअ ते भारत आईनी ऐं हैसियत तब्दील करण जी कोशिश कई। भारतीय क़दम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भञकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमुन इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौम कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पाक फिज़ाई ऐं बहरिया जे सरबराहनि जो योम इतिसाल ते वलारियल कश्मीर जे अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराउ इंसानी हक़नि जी संगीन भञकड़ियुनि ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज जे कब्ज़े ते गणतीअ जो इज़हार। वलारियल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश। आई एस पी आर मूजिबि कश्मीर मसइले जो हल कश्मीरी अवाम जे

0: खास उमरकोट ए थरपारकर जिले के नंढन वडन शहरों में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके से रैलियां कड़ी हुई। नवाबशाह सांगड़ ए नौशेरो फेरोज जिले के भी नंढन वडन शहर से एकी जो इजहार कयो वयो। सखर खैरपुर ए घोटकी जिले में भी रैलियां कड़ी हुई। लाड़काणो कंबर शादात कोट कशमोर अटकनकोट जैकमाबाद ए शिकारपुर में भी रैलियां कड़ी हुई। सिंध काबीना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के नई सर जोड़ जक करण की मंजूरी दई छी। वे वजीर की सदारत हेठ सूबाई काबीना जो इजलास। सूबाकार लागापियल अमलदार की शिरकत। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विस लाए 2026-2027 की बजट मंजूर। 2,72,00,000,000 30,00,000 रूपये की ग्रांट भी मंजूर। दहशतगर्दी टोड़ एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी डिनी वही। महरान हाय ते भी टूल उगाड़न वारे फैसले की मंजूरी डिनी वही। पोरेतन की घट में घट उजरत 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया करण की मंजूरी डिनी वही। मुराद अली शाह चयो आहे त नई उजरतू सिंध में कायम समूरन सनतन ते लागू हूंदियूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सां जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर के वफद सां गड मुलाकात। बिन तरफन लागापियल सहकार के वधीक मजबूत बनाने ते इतफाक। शहबाज शरीफ चयो त हुकूमत नौजवानन की सलाहियत वधाण लाए कम करे रहियो आहे। औरतन के भी बाइख्तियार बनाइण पहिरीं जिम्मेवारी आहे। सिंध के तालीमी इदारन में एक भेरो बीहर छंछर ते मोसलो। वडे वजीर की मंजूरी बाद नोटिफिकेशन जारी कयो वेंदो। तालीम खाते मौजूद तालीमी इदारन में छंछर डी मोकल जो फैसलो हुकूमत आहे। छंछर की मोकल सरकारी तोड़े निजी तालीमी इदारन ते लागू थींदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुरियों छाइयों और हिफाजत के लिए।
4: प्रिकली हीट ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: Tehzeeb o Saqafat se saji Sindh ki mehman nawaz dharti,
5: jiski fazaon mein rachi basi hai banke mohabbat ka saaz. GAFM ki awaaz.
4: GAFM Network. सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो लई।
2: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी और खारिज है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जो वकील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: It's 5 PM. This time check.

0: जंग सबब अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़त्म थी विया। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रम्प ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब के दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिज़ाइल ख़त्म थी विया आहिनि। यमनी हुसियन पारां रेड सी में सऊदी बहरी बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसियन जी फौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरतार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहरी नाकाबंदी बाद 8 बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। बालाइरल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियन सां यकजहती जे इज़हार लाइ अॼु योम इस्तेसाल मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत समूरे मुल्क में मोदी सरकार जे फ़ैसिले ऐं कश्मीरियन सां एके जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तक़रीबनि जो बि अहतमाम कयो वियो। हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई। अॼु खां 7 साल अॻु ती हुकूमत करण ते बालाइरल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कई हुई। सदर आसिफ अली सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो कश्मीर अवाम सां वर्दीअ जो इज़हार। योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते सदर आसिफ अली सरदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे। भारत जा हिक तरफ़ा क़दम आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। अहिड़ा क़दम कश्मीर जी कानूनी हैसियत ख़त्म नथा करे सघनि। पाकिस्तान कश्मीर अवाम जे इख़लाक़ी, सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील जी कोशिश कई। भारतीय कदम आलमी कानून ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ जी भजकड़ी आहिनि। ॾखण एशिया में अमन ऐं इस्तेकाम लाइ कश्मीर मसइले जो हल ज़रूरी आहे। पाकिस्तानी हुकूमत ऐं क़ौमी कश्मीरी अवाम सां गॾु बीठल आहे। आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाई ऐं बहरिया जे सरबराहनि जो योम इस्तेसाल ते बालाइरल कश्मीर जे अवाम सां यकजहती जो इज़हार। बालाइरल कश्मीर में भारतीय फ़ौज जे घेराउ, इंसानी हक़नि जी संगीन भजकड़ियुनि ऐं भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जे कब्ज़े ते गनपीअ जो इज़हार। बालाइरल कश्मीर में भारतीय फ़ौज हथां शहीद थींदड़नि खे भेटा पेश। ISPR मूजिब कश्मीर मसइले जो हल कश्मीरी अवाम जी ख़्वाहिशनि ऐं सलामती काउंसिल जे ठहराउ मूजिब हुअणु घुर्जे। भारतीय चिड़ ॾियारींदड़नि बयान ऐं जारहाणो अमल ख़िते में अदम इस्तेकाम जो सबब बणिजी रहियो आहे। अवाम ऐं पाक फ़ौज कश्मीरियुनि जी आज़ादी जे जाइज़ ऐं हक़ीक़ी जिदोजहद में गॾु बीठल आहे। बालाइरल कश्मीर जो अवाम पंहिंजनि हक़नि लाइ मज़बूती सां बीठल आहे। भारतीय कदम आलमी कानून, सलामती काउंसिल ऐं कश्मीरी अवाम जी उमीद। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में अमन ऐं इस्तेकाम कश्मीर में गंढियल आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध जो अवाम कश्मीरियुनि सां गॾु आहे। भारत कदम बालाइरल कश्मीर जी हैसियत तब्दील नथा करे सघनि। सीनियर वज़ीर शजील लामे अहमद चयो त योम इस्तेसाल कश्मीर ॾखण एशिया जी तारीख़ जो कारो ॾींहुं आहे। भारतीय रियासती जबर ऐं इंसानी हक़नि जूं भॼकड़ियूं कश्मीरी अवाम जे जज़्बे खे कमज़ोर नथियूं करे सघनि। योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं तक़रीबूं। कराची में सूबाई वज़ीर सईद ख़ानी जी अॻुवाणी में रैली कढी वई। हैदराबाद डिवीजन जे टटो, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो लयार, मिटियारी ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। हीरपुर ख़ास, उमरकोट ऐं थरपारकर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते रैलियूं कढियूं वयूं। नवाबशाह, सांगड़ ऐं नौशेरो फिरोज़ ज़िले जे बि नंढनि वॾनि शहरनि में कश्मीरियुनि सां एके जो इज़हार कयो वियो। सक्कर, खैरपुर ऐं घोटकी ज़िले में बि रैलियूं कढियूं वयूं। लाड़काणो, कंबर, शरारकोट, कश्मोर, कनकोट, जेकबाद ऐं शिकारपुर में बि रैलियूं कढियूं वयूं। सिंध काबीना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट जे नए सिरे जोड़ जक करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबाई काबीना जो इजलास। सूबाई वज़ीरनि, सलाहकारनि ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी शिरकत। पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज लाइ 2026-27 जी बजट मंज़ूर। 1,72,30,00,000 रूपियनि जी ग्रांट बि मंज़ूर। दहशतगर्दी टोड़ एक्ट में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। बहिराणा हाईवे ते टोल उगारण बारे फैसले की मंजूरी दिनी वही पोरियतन के घट में घट उजरत 40,000 मां वधाए 43,000 रूपया करण की मंजूरी दिनी वही। बादल शाह चयो है नयू उजरतू सिंध में कायम समूरियो सनअतन ते लागू हुंदियूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ की सदारत हेठ बिजली विराईंदड़ कंपनी की निजकारी बाबत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी वारे अमल में आलमी सीड़पकारन की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। निजकारी कमीशन वारो कम भी वही कारी के शफाफ बनाया वे। निजकारी में वाइपेदारन के हकन जो खास तौर से ख्याल रखो वे। आलमी माहिरन जो भी खिदमतू हासिल कई वन। उर्दन में बैतुल मुक़दस बाबत मुस्लिम मुल्कन के परेही वज़ीरन की कॉन्फ्रेंस। बैतुल मुक़दस समेत फलस्तीनियन की जमीन ए घर कब्ज़न की मसम्मत। नायब वज़ीर आज़म सागर खिताब कन्दे बैतुल मुक़दस में इसराइली जारियत आलमी कानून खिलाफ है। मुक़दस बागन से इसराइली कब्ज़न के कबूल न थो कर सके। सिंध के तालीम इदार में एक भेरों बीहर छंछर से मोकल करने का फैसलो। वे वजीर की मंजूरी बाद नोटिफिकेशन जारी किया वो। तालीम खाते मौजूद तालीम इदार में छंछर की मोकल जो फैसलो हुकूमती बचत मुहिम तहत किया वो है। छंछर की मोकल सरकारी तौड़ी निजी तालीम इदार से लागू थी। तहरीक तहफुज आईन ए पाकिस्तान के सदे मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा रैलियों। एसयूपी ए पीटीआई कारकुनान मुख्तलिफ शहर में रैलियों कढ़ियों। कंदकोट दादू बदीन उमरकोट सेवण पनवा केल मुरीद चाक थुल बेन शहर में एहतजाज किया। अखबारों पारा मुल्क में आईन ए कानून की हुकमरानी कायम करने का मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में ज़रई पानी की खोट खिलाफ आबादगार का मुजाहरा। केन शाह में राइस कैनाल मां निकरंदड़ बेगू देरो शाख के आबादगार गोजू लिंक रोड से धरणो हयो। नसीराबाद में भी पानी खोट खिलाफ एहतजाज। अखबारों जो नसीराबाद की शाखन में पानी छोड़ करण जो मुतालबो। नवाबशाह जी पीपल्स।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ना जीत जाती है मोहब्बत, हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Tehzeeb o Saqafat se saji Sindh ki mehman nawaz dharti
5: jiski fazaon mein rachi basi hai ban ke mohabbat ka saaz. GAFM ki awaaz.
4: GAFM Network. सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बस।
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क दे।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
5: त पोइ तूं फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
6: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
5: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
6: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
5: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
6: इस्तेमाल कीअं कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: लालपुर कैनाल में पानी छोड़ करे छो है, अड़ा फैसला मुल्क वफाक लाए हानिकार साबित। पानी मामलों बाबत कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास में पीपी मेंबर्स जो एहतजाज। इजलास में पीपल्स पार्टी एमएनए मीर मुनवर टालपुर शासियत अमरी सख्त एहतजाज कर जलालपुर कैनाल मामलो सीसीआई में गौर हेठा है, अड़ा फैसला मुल्क के मफाद में ना। पानी मामलों वे वफाकी वजीर मोइन वटू जलालपुर कैनाल वहां वे पंजाब के फैसले की अणसिधी रीत दिफा कदे सिंध के पैंजे मुकर्र हिस्से का पानी फराम किया वो है। सिंध जडे भी इजाफी पानी की घुर कई है, वफाक सिंध के मुकर्र कोटा का पानी दिनो है। कमेटी चेयरमैन पानी कोट सबब आबादगार सख्त परेशानी के मुंह दियन पाया, हकीकतन की बुनियाद से जायजो वरतो वो।

सिंधी आबादगारनि जलालपुर ऐं मराला लिंक केनाल जो तामीराती कम फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो करे छॾियो। नवाब ज़ुबैर टालपुर जी सदारत हेठि सिंध आबादगार इतिहाद जे इजलास दौरान सिंध में पाणी जी खोट ते गणती ज़ाहिर। ज़रात ते लागू कयल टैक्स 45 मां घटाए 15% करण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त 1991 वारी पाणी मुआदे जी भजकड़ी करे सिंध जे हिसे जो पाणी चोरायो पियो वञे। गैर कानूनी जलालपुर केनाल खे वहण ऐं मराला नलक केनाल जी तामीर सिधो जे पाणीअ ते धाड़ो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां केफोर मनसूबे ते पंहिंजे हिसे जो 66% कम मुकमल करण जी दावा। क़ौमी असेंबली जे पाणी मामलनि वारी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में केफोर बाबति ब्रीफिंग। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू चयो आहे त केफोर मनसूबे ते वफ़ाक़ जो रहियल कम हलंदड़ साल मुकमल थी वेंदो। सिंध हुकूमत केतिरो कम कयो आहे इहो उन खां ई पुछियो वञे। वापदा चेयरमैन जो चवण आहे त खेनि 50 मेगावाट बिजली घुर्जे त पर सिंध हुकूमत अञा ताईं नाहे ॾिनी। मनसूबो मुकमल बि थियो त बिजली खां सवाइ कीअं हलंदो? वाटर बोर्ड JCEO चयो त फंड मौजूद आहिनि, उमीद आहे त सिंध हुकूमत 2029 ताईं कम मुकमल करे वठंदी। ईरान अपने हर्मुज बाबत अमान सां मुआदे में देर जो जिम्मेवार अमेरिका खे करार ॾेई छॾियो। ईरानी अख़्तारनि मूजिब अमान सां मुआदे में देर जो करण अमरीकी मुदाख़लत ऐं सदर ट्रंप जूं धमकियूं आहिनि। जेसि ताईं अमरीकी अमले जो ख़तरो बरक़रार रहंदो तेसि ताईं अपने हर्मुज बाबति मुआदे ते अॻुभराई मुमकिन न हूंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जल्द अपने हर्मुज खुली वेंदो, ॿी सूरत में ईरान खे ख़तरनाक हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अपने हर्मुज जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमिलो कयो वेंदो। अपने हर्मुज बाबति शुरूआती मुआदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती मुआदे तहत अपने हर्मुज खे 70 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स्यूस जी दावा एक्स्यूस मूजिब मुआदे सां अपने हर्मुज ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हर्मुज जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंजूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी इख़्तियारियूं अॼु मुआदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमरीकी हथियारनि जी ज़खीरे में वॾे घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाट जा 80% इंटरसेप्टर ख़त्म थी विया। अमरीकी हाबरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिसाइल ख़त्म थी विया आहिनि। यमनी हुसैन पारां रेड सी में सऊदी पहिरीं बेड़े खे निशानो बणाइण जी दावा। हुसैन जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जे बहिरी नाकाबंदी बाद 8 पहिरीं बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलता जड़ी
4: ये yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मोरे पिया, 20 से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: که مکرینو.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

मोहब्बत जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए राज़े उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जय हैदराबाद मटियारी।

0: FM 91.6 सुनते जो आवाज बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन। जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं क्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: जे खदशे सबब सदर ट्रम्प ईरान ते वॾो हमलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। बरतानवी मीडिया मूजिब बि दुरुस्त निशानो लॻाईंदड़ अमरीकी मिज़ाइल ख़तम थी विया आहिनि। यमनी हुसियन पारां रेड सी में सऊदी पहिरीं बेड़े खे निशानो पाइण जी दावा। हुसियन जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त रेड सी में सऊदी अरब जे तेल बरदार बेड़े खे मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। सऊदी जी बहरी नाकाबंदी बाद अठ बहरी बेड़नि खे समुंड में निशानो बणायो आहे। पाकिस्तान पारां वलारायल बैतुल मुक़दस में इसराइली कदमनि जी मज़म्मत। इसराइली कब्ज़े जे नापाक मक़सदनि खे क़बूल न करण जोॻो करार ॾेई छॾियो। फलस्तीन जी आज़ादी लाइ अरब ऐं मुस्लिम मुल्कनि खे गॾिजी कम करण ते ज़ोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार उर्दन में वज़राती इजलास खे ख़िताब कंदे चयो आहे त वलारायल बैतुल मुक़दस में इसराइली कानूननि जी भञकड़ी आहिनि। हू मस्जिद अक्सा में इंतिहा पसंद इसराइलियुनि जे मुदाख़लत जी मज़म्मत कनि था। पाकिस्तान इसराइल पारां गैर क़ानूनी आबादकारियुनि ऐं फलस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे वरितो। गज़ा में इंसानी सूरतहाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहे। माण्हू खुराक ऐं पाणी जी सख़्त खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ऐं कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरी सख़्त परेशान। सदर ओल्ड सिटी एरिया, एमेजना रोड, रीगल चौक, वोल्टन मार्केट, नेपियर रोड, न्यू एमेजना रोड, ज़ैनब मार्केट ऐं शाहीन कॉम्पलेक्स वटि गाॾियुनि जूं कतारूं। आईआई चंडीगढ़ रोड, टावर, माड़ीपुर, माई कलाची रोड, शाहराह फैसल, कारसास, नेशनल स्टेडियम, ईसा नगरी, कयूमाबाद ऐं बहरिया कॉम्पलेक्स, वतलवार ऐं अब्दुल्ला हारून रोड ते बि बदतरीन ट्रैफिक जाम। दिग रोड खां नीपा चौरंगी वेंदड़ रोड ऐं लियाक़ताबाद खां हबीब चौरंगी वेंदड़ शहरी बि सख़्त परेशान। वरी वज़ीर ट्रैफिक जाम जो नोटिस वरितो। आईजी सिंध ऐं एडिशनल आईजी कराची खे ट्रैफिक बहाल करण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो आहे त ट्रैफिक पुलिस जी वाधू नफ़री रोडनि ते मुक़ररु करे रिपोर्ट पेश कई वञे। रोडनि तां गाॾियुनि जूं कतारूं ख़तम कराए ट्रैफिक जी रवानी हर सूरत में यकीनी बणाई वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज,
2: जिए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: रखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: मुआदो अज थियण जा इम्कान शुरूआती मुआदे तहत अपना मुस्क सठ डीह लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्स्यूस जी दावा एक्स्यूस मूजिब मुआदे सां अपना हरमुस जे कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि हुरमुस जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते उमान जो कंट्रोल हूंदो ईरान मंजूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे अमरीकी अख़्तियारियूं अॼु मुआदे जो ऐलान करे सघनि थियूं ईरान जंग सबब अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़त्म थी विया अमरीकी ख़बरु इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चीरे अदादियुनि ते फ़ैसिलो मिलिया मूजिब बि दुरुस्त अमरीकी मिसाइल यमनी हुसैन पारां बेड़े के समुंड में निशानो पाकिस्तान पारां वालारियल बैतुल पाकिस्तान इसराइल पारां गैर कानूनी आबादकारियुनि ऐं फलस्तीनी इलाइक़नि ते कब्ज़े खे रद्द करे थो गज़ा में थी रही आहे माण्हू खुराक ऐं पाणी जी सख़्त खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी हैसियत ख़तम करण ख़िलाफ़ ऐं कश्मीरियुनि सां यकजहती जे इज़हार लाइ होम एहतसाल मल्हायो पियो वञे सिंधे ऐं कश्मीरियुनि सां एके जे इज़हार लाइ रैलियूं ख़ासि तकरीबनि जो बि एहतमाम कयो वियो हिकु मिंट जी ख़ामोशी बि इख़्तियार कई वई अॼु खां 7 साल अॻु 5 अगस्त 2019 ते भारतीय हुकूमत हिकु तरफ़ो क़दम खणंदे वालारियल कश्मीर जी ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़तम कई हुई सदर आसिफ अली सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कश्मीरी अवाम सां वधीक जो इज़हार योम इस्तेसाल कश्मीर जे मौके ते सदर आसिफ अली सरदारी चयो आहे त ॾखण एशिया में जटादार अमन जो क़याम कश्मीर मसइले जे हल सां जुड़ियल आहे भारत जा हिकु तरफ़ा क़दम आलमी कानून जी भजकड़ी आहिनि अहिड़ा क़दम कश्मीर जी कानूनी हैसियत ख़तम नथा करे सघनि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जी इख़लाक़ी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखंदो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 5 अगस्त 2019 ते भारत कश्मीर जी आइनी ऐं कानूनी हैसियत तब्दील करण जी कोशिश सलामती कानून

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जी FM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: पागल। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे FM न्यूज।
4: करू वजीर मोहसिन नकवी जी गाल बोल। मोहसिन नकवी चयो त जिन जिन माण्हुनि चयो त मूं 30 सालनि जो सफ़र 3 सालनि में तय कयो उन्हनि जी बि महिरबानी। पाकिस्तान ऐं ईरान सरहदी वापार खे हथी ॾियण तोड़ी तफ़ाक करे बहितर लॉजिस्टिक्स ऐं मोहम्मद अताबिक में 6 रुकनी वफ़द जी मुलाक़ात। पुलिसाणियूं कोशिशूं जारी रखंदो। ताज़ो ई ख़िते में अमन जे कपन ते सुठी ॻाल्हि ॿोलती। पाकिस्तान पड़ेसरी ब्रादर मुल्क ईरान सां लाॻापन खे क़दर जी नज़र सां ॾिसे थो। उमीद आहे त पाकिस्तान 10 अरब डॉलर जे हितरफ़े वापार जो हदफ़ हासिल कयो वेंदो। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक जी पाकिस्तान सां इक़्तिसाद वधीक हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। देर जो जिम्मेवार ॾेई छॾियो।